हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: नॉर्वे के परदेही वजीर जूं वजीर आजम शहबाज शरीफ नायब वजीर आजम इसहाक डार ए फील्ड मार्शल सैद अलग अलग मुलाकातूं बिन तरफन लागापन समेत खिते के सूरत हाल से गालियों मुख्तलिफ़ शोबन में सहकार वधाइण ते इतफाक नॉर्वे के परदेही वजीर पारां अमन के क़याम लाइ पाकिस्तानी कोशिशुनि जी वाखाण ISPR मूजिब नॉर्वे के परदेही वजीर वफद सां गॾु GSU में फील्ड मार्शल सां मुलाकात करे गडि॒यल दिलचस्पी जे मामलनि इलाक़ार ते ख़्यालनि जी डे॒-वठि कई फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर आलमी अमुन ऐं इलाक़ाई इस्तेहकाम बाबति पाकिस्तान जो मौक़ो पेश कंदे गडि॒यल सिक्योरिटी चैलेंज सरकार ऐं अहमियत ते ज़ोर मुलाक़ात दौरान नॉर्वे जे परडे॒ही वज़ीर चयो त मौजूदा आलमी मईशत लाइ ख़तरो बणियल आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

जी समय ने केड़ा लण जा खुश आयो ठीक आयो चाक जंगा भला असा जी हर पल हमेशा अवा प्यार सजन लाए यही दुआ होंगी है जिती बुझो खुश जो कदें दुखियो दीन डसो सदाई गुलाब जे गुलन जिया खिलंदा मुस्करंदा रहो आमीन। समय जा अज डी आए अज टीह सफर वठे तले जी रिसन असम अज 14 अगस्त जो डी आए आजादी जो डी आए जशन आजादी पान मल्हायूं पिया पूरे मुल्क में पूरी सिंध में नंढन गोठन वस्ती वण में पान प्रोग्राम मल्हायूं पिया तमाम प्रोग्राम स्कूलन में कॉलेजन में पार्कन में तमाम वॾनि वॾनि प्रोग्रामन में रैलियूं शामिल थी रहियूं आहिनि। त साईं जा असांजो जेको प्रोग्राम आगाह थींदो त असांजो ॻाल्हि ॿोल कंदासीं असांजो उस्ताद आहे साईं नियाज़ हुसैन जूणे जो जेको प्रिंसिपल आहे।

0: सिंध ग्रीन पब्लिक हाई स्कूल ॻोठ धूणलाशारी जो उन सां हाल अहिवाल कंदासीं त उहे अॼु पंहिंजे जशन आज़ादी जो प्रोग्राम कीअं पिया मल्हाइनि। असां सां लाइन ते आहे साईं नियाज़ हुसैन जुण जो। साईं अस्सलाम वालेकुम। साईं अस्सलाम वालेकुम।
1: साईं वालेकुम सलाम।
0: छा हाल साईं, ख़ुशि आहियो त भई ठीकु
1: आहे?
0: साईं तव्हां असां सां लाइव आयो, जी एफ एम 88 जो प्रोग्राम आहे, उन में
1: आवाज़ घटि पियो अचे।
0: हलो हलो, तव्हां जो उस्ताद हाणे सही
1: आहे?
0: आवाज़ क्लियर आहे असां ताईं?
1: हलो सर।
0: जी जी।
1: हा सर,
0: तव्हां पंहिंजो अॼु प्रोग्राम जशन आज़ादी जो कीअं पिया मल्हायो साईं?
1: ॿार पंहिंजूं पाकिस्तानी में असां वटि आया आहिनि ऐं तमामु पिया अचनि ॾाढा।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह। अॼु तव्हां पाकिस्तान जे हवाले सां छा चवणु चाहींदव? जशन आज़ादी हवाले सां छा चवणु चाहींदव तव्हां साईं?
1: जी सर,
0: तव्हां पाकिस्तान जे आज़ादीअ लाइ छा चवणु चाहींदव? तव्हां पाकिस्तान जे हवाले सां छा था चवणु चाहियो?
1: हलो सर।
0: जी साईं, तव्हां पाकिस्तान जे आज़ादीअ लाइ छा था चवणु चाहियो? तव्हां सर अॼु आज़ादीअ जो ॾींहुं आहे, जशन आज़ादीअ जो थिया, त उन बारे छा था चवणु चाहियो?
1: असांखे ख़ुशीअ सां मल्हाइणु घुरिजे। शुक्र अलहमदिल्ला, असां हिकु पाक वतन, आज़ाद वतन में रहूं था, जंहिंजो नालो पाकिस्तान आहे। असां पाकिस्तान तमामु जोश ऐं जज़्बे सां अहिड़ा ॾींहं मल्हाइणु घुरिजनि ऐं ॿारनि में बि अवेयरनेस पैदा करणु घुरिजे त 14 अगस्त 1947 ईस्वी ते असांजो प्यारो वतन पाकिस्तान दुनिया जे नक्शे ते नमूदार थियो। ऐं ही जेको आहे हर साल असां जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाईंदा आहियूं ऐं असांखे मल्हाइण बि घुरिजे ऐं हर इदारे में मल्हाइणु घुरिजे, स्कूलनि में, कॉलेजनि में मल्हाइणु घुरिजे, शहरनि में मल्हाइणु घुरिजे, ॻोठनि में मल्हाइणु घुरिजे ऐं जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाइणु घुरिजे, तमामु घणी ख़ुशीअ सां मल्हाइणु घुरिजे त जीअं असांजो जेको नंढो नसुल आहे उन में बि हिकिड़ी ख़बरदारी अचे, अवेयरनेस अचे त 14 अगस्त असांजे मुल्क पाकिस्तान जो हिकिड़ो आज़ादी जो ॾींहुं आहे ऐं असां हर साल ही तमामु ख़ुशीअ ऐं जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाईंदा ईंदा आहियूं।
0: वरी महिरबानी साईं, तव्हांजी वॾी महिरबानी। तव्हांजे स्कूल जे ॿारनि जो आवाज़ बि अचे पियो ऐं माशाल्लाह तव्हां जोश खरोश सां प्रोग्राम मल्हायो पिया, वॾी महिरबानी सर। अजीआ समय असांजो दोस्त, असांजो उस्ताद, पंहिंजो प्रिंसिपल सिंध ग्रीन पब्लिक हाई स्कूल ॻोठ धूणलाशारी खां जंहिं पंहिंजा ख़्याल पेश कया ऐं हुन जे बैकग्राउंड में ॿारनि जो आवाज़ अचे पियो, तकरीरूं जोश जज़्बा हुया, ताड़ियूं हुयूं। दोस्तनि जी वॾी महिरबानी ऐं समय वरी असां मिली नगमो अवां ते पहुचाईंदासीं। गॾिजी इंजॉय कयूं।

जी हा साईं, मुंहिंजा प्रोग्राम आज़ादीअ जा रंग ख़ुशूसी प्रोग्राम आहे 14 अगस्त जे हवाले सां। त प्रोग्राम आज़ादीअ रंग अव्हां ॿुधो पिया GFM 88 जे नेटवर्क तां, जंहिंमें सखर, लाड़काणो, मीरपुर ख़ास, मोरो, मेरापुर, सकरंड, मटियारी ऐं मातली स्टेशन तां तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया। त सभिनि तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीक 11 वॻे ताईं तव्हां सां आज़ादी हवाले सां, पाकिस्तान जे हवाले सां ऐं जशन आज़ादी हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थींदी रहंदी। ऐं कॾहिं बि न वञिजो असां सां गॾिजो हिन वक़्तु हलूं पिया असां थोरी देर में कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये है।

0: हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
1: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
3: इन मिट्टी जा रंग रौनकू ए जरखेजी असाजे हारिय साईं ताहिन आबाद हाणे इन जो अन्याब वधीक मान वधाइण लाए तवां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जी समय वापस अची कयूं प्रोग्राम असांजो आहे ख़ासि प्रोग्राम आहे जशन आज़ादी हवाले सां 14 अगस्त जे हवाले सां प्रोग्राम नालो आहे अॼु आज़ादीअ जे रंग ऐं आज़ादी जे रंग जे हवाले सां असांजा अॼु ख़ुशूसी महिमान असां सां लाइन ते आहिनि जेकी पाण पंहिंजो उस्ताद आहिनि हेड मास्टर आहिनि ऐं प्रिंसिपल आहिनि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो नओं दरो ज़िलो लाड़काणे जा पाण गज़ेटेड ऑफिसर आहिनि हेड मास्टर आहिनि पाण उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जशन आज़ादी हवाले सां त अॼु आज़ादी जो ॾींहुं कीअं पिया मल्हाइनि साईं असांजो उस्ताद आहे अनीस अहमद लाशारी साईं अस्सलाम अलैकुम साईं अनीस अहमद लाशारी तव्हां असांखे प्रोग्राम असांजो जी एफ एम 88 जो नेटवर्क आहे ऐं असांजो प्रोग्राम आहे एफ एम रेडियो ते पूरी सिंध में असांजो प्रोग्राम लाइव आहे तव्हांखे असां बि लाइव वरितो आहे तव्हांखे प्रोग्राम में भलीकार पिया चऊं साईं अच्छा तव्हां सर अॼु उस्ताद बि आहियो प्रिंसिपल बि आहियो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गढ़ी खुदा बख्श जा तव्हां अॼु कीअं पिया जशन आज़ादी जो वक़्तु मल्हायो अॼु
1: साईं आज़ादी जेका सा अलाए तरफ़ां वॾी नेमत आहे हिन वक़्तु असांजे स्कूल में बि हिकिड़ो इवेंट आहे रिथियल आहे असां वटि ॿारनि में वॾो जोश परोश मौजूदु आहे ख़ासि करे इन जे करे बि जो गुज़िरियल साल जेको मारकाए हक़ बुनियादनि महसूस थियो जंहिंमें पाकिस्तानी फ़ौज पूरी बहादुरीअ सां असांजे दुश्मन मुल्क जा जेके नापाक इरादा हुया उन्हनि खे ख़ासि में मिलाए छॾियो ऐं उहो जज़्बो जेको पाक फ़ौज में हुयो उहो हिन वक़्तु असांजे ॿारनि में मौजूदु आहे ॿार नंढा ॿार जेके प्राइमरी स्कूल जा ॿार आहिनि ॾाढा उहो चंडियूं बि खणी आहिनि पाकिस्तान जूं ऐं लिबास बि पाकिस्तानी झंडे जो पासो करे आया आहिनि ऐं ॾाढा ख़ुशि आहिनि उहे मिली नगमा बि ॻाइनि था पिया ऐं जेको आहे सो गीत बि गुज़ारनि था पिया हिकिड़ो ॼणा ईद जो माहौल लॻो
0: पियो आहे जी जी ऐं कपिड़ा बि रंगारंगी पाता हूंदा पाकिस्तान झंडे जा कपिड़ा पाता हूंदा ऐं मां त ॾिसां पियो
1: स्पीकर्स वग़ैरह पंहिंजे जेको आहे सो फेसिस ते हणींदा आहिनि मतिलबु ॿार पाकिस्तान जो क़ौमी झंडो
0: ऐं
1: इहे शइ हुन में बिल्कुलु नुमायां थी महसूसु थियनि ॿार
0: ऐं काफ़ी जो आहे नंढड़ा ॿार पंहिंजी आर्मी जूं वर्दियूं पाईंदा आहिनि पुलिस जूं वर्दियूं पाईंदा आहिनि पाण खे आर्मी जा जवान पाण खे सॾाईंदा आहिनि माशाल्लाह ॾाढो रंग भरी प्रोग्राम हूंदा आहिनि जी जी
1: असां वटि हिकिड़ो नंढो बिल्कुलु हिन पाक आर्मी जो जेको आहे सो वर्दी आहे हुन में मलबूस आहे ऐं ॾाढो हिकिड़ो सुठो हुनजी लुक आहे छो त हुनखे पाकिस्तान सां पाकिस्तान फ़ौज सां जेको आहे सो ॾाढो चाह आहे
0: अच्छा असांजो अनीस अहमद लाशारी साहिबु तव्हां उस्ताद आहियो ऐं मूंखे जेतिरी ख़बर आहे त तव्हांजो वाल साहब बि उस्ताद आहे ऐं तव्हांजो ॾाॾा साईं बि वक़्तु उस्ताद ऐं पाकिस्तान जी आज़ादी हवाले सां त असांजे समय खे कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदव
1: सर आउं त इहो ई चवंदुमि त शुक्र अलहमदिल्ला असां हिन वक़्तु हिकु आज़ाद मुल्क में जेको आहे सो आज़ाद फिज़ा में असां पाकिस्तान प्यारे मुल्क पाकिस्तान में मौजूदु आहियूं इहे असांजे वॾनि जूं ऐं उन टाइम जा जेके असांजा लीडर्स हुया तिन गॾिजी जेको आहे सो कानूनी ऐं जेको आहे सो पंहिंजी

0: मुल्क की खातिर जंग विड़ी ऐं असांखे हिकु आज़ाद मुल्क पाकिस्तान ॾिनो। हिन वक़्तु वरी हाणे इहा असांजी ज़िमेवारी आहे त हुन मुल्क पाक मुल्क जी जेको आहे असां कहिड़े नमूने सां ख़िदमत कयूं था ऐं हिफ़ाज़त कयूं था। आज़ादी जी अहमियत वॾी आहे, ख़ासि करे उहे मुल्क जिन जे मथां ॿिया मुल्क क़ाबिज़ आहिनि, जीअं कश्मीर आहे, फलस्तीन आहे, शायदि उन्हनि खे हिन आज़ादी जी वधीक क़दुरु हूंदो। शुक्र अलहमदिल्ला असां आज़ाद मुल्क में आहियूं ऐं असां इहो ई पैगाम ॾींदासीं त पंहिंजे मुल्क सां प्यार करे, पंहिंजी धरती सां प्यार करे, छो त आज़ादी जहिड़ी का नेमत ई कोन्हे।
1: बिल्कुलु हक़ीक़त, माण्हू न पंहिंजे मुल्क सां सचो हुजे।
0: बिल्कुलु साईं।
1: साईं अनीस अहमद लाशारी, तव्हां हेड मास्टर आहियो, प्रिंसिपल आहियो पंहिंजो प्राइमरी पंहिंजी स्कूल घड़ी खुदा भुजा, तव्हांजी वॾी महिरबानी सर, लख कुर्ब।
0: वॾी महिरबानी साईं, तव्हां सभिनी खे साइमिन खे मुंहिंजी तरफ़ा आज़ादी जूं जेका सपोर्ट सारियूं वधायूं।
1: वॾी महिरबानी, लख कुर्ब, लख कुर्ब। जी समेन असांजो उस्ताद, असांजो हेड मास्तर ऐं पुश्त बाए पुश्त उस्ताद, याने जेको पाण उस्ताद आहे हुनजो वाल साहब बि उस्ताद ऐं असांजो हुनजो ॾाॾा साईं बि उस्ताद। त हिन वक़्तु पाण पंहिंजो प्राइमरी स्कूल घड़ी खुदा बख़्श ज़िलो लाड़काणो जा हेड मास्तर बि आहिनि, प्रिंसिपल बि आहिनि, हुनजी वॾी महिरबानी असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया। त समेन हिन वक़्तु वरी असां अव्हां खे हिकिड़ो मिली नगमो ॿुधाईंदासीं, गॾिजी पिया ॿुधूं।

जी असमें प्रोग्राम है आजादी जा रंग प्रोग्राम आजादी के रंग में तवा असा जशन आजादी जो मुबारकू मोकले असाजे नंबर ते असाजो नंबर है 0333-2132-88 ते जेके असाजा नवा दोस्त प्रोग्राम बुधन पिया या जैं भी पांजो रेडियो सेट हाणे हाणे ऑन कयो आहे असा उनके SMS करण जो आसान तरीको बुधाईंदासीं। मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो तव्हां उते LRK लिखी स्पेस ॾींदो पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ नालो आज़ादी मुबारकूं तव्हां असां ॾे मोकिलींदो 888-1 ते सेंड कंदो साईं जा तव्हां असांजे फेसबुक जी ID ते यानी GFM88 जी ID ते बि तव्हां असांजे फेसबुक जे पेज ते बि तव्हां पंहिंजा नाला पंहिंजो आज़ादी जो मुबारकूं लिखी मोकिले सघो था असां ॾे तव्हां कॉल करे बि पंहिंजे आज़ादी जे हवाले सां मुबारकूं जशन आज़ादी जे हवाले सां मुबारकूं ॾेई सघो था। असांजो नंबर आहे 0333-2132-88।

जी हाँ समय ने प्रोग्राम आज़ादी या रंग जारी सारी है तवाजो सो साथ रो ठीक यारह वगे तेरे मिनट जो इन वक्त हलूँ पा न्यूज़ ब्रेक तरफ ए कमर्शियल ब्रेक की तरफ वरी वापस।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Dex Ointment.
4: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
3: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap sunenge GFM Network par KTN News.
6: Brought to you by
7: Sona Yuya Granular. Mitiye jo.

वज़ीर-ए-आज़म जमहूरियत के हक में अजीम कामयाबी कौम के मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद मुनीर के खराज तहसीन। शहबाज शरीफ रिवायत फील्ड मार्शल की क्यादत में हथियारबंद फौज दुश्मन की तारीखी शिकस्त दिनी। हवाई ए समुंदरी फौज के सरबराहन जो भी क्यादत में फौज जो किरदार सारा जोगो है। मुबारक हक की कामयाबी पाकिस्तान की इज्जत में गैर मामूली वाद कई जो मिसाल न तो मिले। इस्लामाबाद में यादगार फतेह की फिदाई तकरीब के खिताब कदे शहबाज शरीफ चो तो पाकिस्तान के पानी जो एक एक फोड़ो असांजी रेड लाइन है। भारत सीधी वाट ते न आयो तो खेस जवाब दिनो वो पाकिस्तान किथे दुनिया के तकरारन का पाक डिसण चाहे तो। तकरार गडियल कौमन के ठहराव मुताबिक हल थियण घुर्जे। अमन चाहूं था पुर अमन की ख्वाहिश के कमजोरी न समझो वे। वड़े वजीर सैयद मुराद अली शाह चयो है तो सिंध पाकिस्तान ठाण में मुतहद हुई है। अज पाकिस्तान की तामीर ए तरक्की लाए पिण सिंध मुतहद है। जडे असा का सत या अठ भेरा वे मुल्क पाकिस्तान से हमलो कर तो समूरी कौम एक थी वही। अज असा पैंजी फौज के करे सुकून की निंड कर रहा हूं। असो वजूद पाकिस्तान के करे है। पाकिस्तान की तरक्की में असा सभी के पैंजो इज्तमाही किरदार अदा करण घुर्जे। सीनियर वजीर शर्जिली नामे मण पारा 79 जश्न आजादी वाले दिहाड़े ते समूरी कौम के मुबारकबाद। शर्जिली नामे मण चयो है तो पाकिस्तान असो वतन है। असि सुणप है। असि उम्मीद है। असि ख्वाबन की ताबीर है। ये वतन असाजे शहीदन की अमानत असाजे बुजुर्गन की कुर्बानी की निशानी है। असाजे ईंदड़ नस्लन की उम्मीद है। अज उन मानुन के याद करण जो डी है जन पाकिस्तान जो ख्वाब डिठो हो। अज असा आजादी वाली फिजा में साह खी रहा हूं। उन बेशुमार कुर्बानी की एक लाजवाल दास्तान है।

कराची में जश्न आज़ादी के मौके ते हवाई फायरिंग जा वाकया एक औरत मारजी वही औरत ने बारन समेत 85 जणा जख्मी पापोश नगर सराफा बाजार में गोली लगन सब 32 वरन की औरत निदाम मारजी वही औरंगी टाउन नाजमाबाद नॉर्थ कराची पापोश नगर गुजरी गिजरी सदर अकबर रोड आया चंडीगढ़ रोड कोरंगी मलीर लांडी बेन इलाक में फायरिंग जा वाकया पेश आया फायरिंग सबब जख्मी थेलन में 38 मर्द 8 औरतू दबारड़ा 5 निगरू शामिल है जख्मी में 26 जणन के जिना अस्पताल 17 के सिविल अस्पताल 18 जख्मी के अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर पुलिस फायरिंग करण के इल्जाम हेठ

0: ऐं केटीए न्यूज़ जे शहीद साफ़ी जान मोहम्मद महर जी टीं वर्सी चक में शहीद जान मोहम्मद महर जी मज़ार ते माइटनि ऐं कलमदड़नि जी हाज़िरी टे साल गुज़रण बावजूद क़तल केस जा मुख्य जवाबदार कानून जी पकड़ खां आजा। सिंध हुकूमत जे वाइदनि बावजूद शहीद जे खून सां इंसाफ़ न थी सघियो। छह जवाबदार बख़्शल महर, बाबर बशीर, मुनवर महर, रमज़ान शेख ऐं ॿिया ज़मानत ते आज़ाद थियल। मुख्य जवाबदार जुमन महर, गुलज़ार नसीर, रोशन मोहसिन महर ऐं ॿिया गिरफ़्तारी न थिया। शहीदनि जान मोहम्मद जा वारिस ऐं कलमदड़नि खे इंसाफ़ जो इंतज़ार।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध।
1: It's 10:50 is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, असली ग्लो हर निया जोशो, a product by Biocon International Pakistan।
3: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
0: GFM 91.6
4: जियो।

0: सिंध की एक और पहचान।
1: GAFM 88 नेटवर्क,
0: सिंध की आवाज।
2: जी हाँ, समय प्रोग्राम खुशूसी हवाले से इन वक्त प्रोग्राम में कचहरी कराइंदी हाल हवल असो तमाम सीनियर सहाफी हनीफ सुहाग अस लाइन थी है उन मालूम वी आजादी जा रंग जशन आजादी कि मल्हा साई। अस्सलाम वालेकुम। हनीफ सुहाग साहब तथा प्रोग्राम GAFM 88 के नेटवर्क में प्रोग्राम है आजादी जा रंग में तवे भली कर पे चुम। सर जशन आजादी का डी है 14 अगस्त तुम कि मल्हा लाड़काने में
3: ॾिसो अॼु असांजी ख़ुशी जो ॾींहुं आहे। सभिनी जेके पाकिस्तान वासी आहियूं असांजी अॼु मोहबत जी निशानी आहे। हीउ मुल्क असांजी जेको आहे अलाए केतिरनि हज़ारे माण्हुनि जी जेको आहे क़ुर्बानी खां पोइ असांखे आज़ाद थी मिलियो।
2: इहा
3: असां लाइ नेमत आहे ऐं हीअ नेमत असांजी अॼु जेको आहे जेका असांजी ख़ुशी आहे उहा ईद जहिड़ी ख़ुशी आहे।
2: छो
3: त असांजे मुल्क जे असांजी मुल्क जो आज़ाद थियो उन खां पोइ पंहिंजो असां आज़ाद मतिलबु घुमण लॻासीं, आज़ाद खाइण लॻासीं। जॾहिं ॿाहिरि मुल्क इंसान वञे थो असीं जॾहिं वियासीं
2: त
3: हुते अहसास थिए थो त भई असांजो मुल्क केतिरो आज़ाद आहे
2: ऐं
3: ॿियनि मुल्कनि में केतिरियूं पाबंदियूं आहिनि। त उन हवाले सां असांजो मुल्क तमामु वॾो क़ीमती मुल्क आहे, तमामु वॾो अहम आहे ऐं असां ख़ुशि असां तमामु ख़ुशि नसीब आहियूं जो असां पंहिंजे आज़ाद मुल्क में पैदा थिया आहियूं। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त अॼु मां आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान लाटकर जो सेक्रेटरी बि आहियां, तव्हांखे ॼाण आहे त अॼु आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान लाटकर फरांसे राति जेको आहे तमामु शानदार जशन आज़ादी जो असां मुल्क जी आज़ादी ख़ुशी में हिकिड़ी तकलीफ़ कोठाई आहे ऑफिसर थिएटर में जेको आहे
2: ऑफिसर
3: थिएटर आहे जिते म्यूज़िकल नाइट आहे जंहिंमें सिंध जा सुरीला रागी जंहिंमें सुरनि जी वखा कंदा ऐं उनखां टेबलो पेश थींदा क़ौमी नगमा हूंदा जंहिंमें लाटकनि जा ऑफिसर्स शहरी शख़्सियतूं मुख़्तलिफ़ शरीक थींदा।
2: उन
3: खां अलावा हींअर प्रेस क्लब में बि जेको आहे असां प्रेस क्लब पारां बि जेको आहे शानदार तकलीफ़ कलाक खां पोइ शुरू थियण वारी आहे
2: ऐं
3: जंहिंमें बि जेको आहे उते केक कटियो वेंदो ऐं उते शानदार तकलीफ़ थींदी जंहिंमें मुख़्तलिफ़ शख़्सियतूं शरीक थींदो। ईअं ई सुबुह जो जीअं म्युनिसिपल स्टेडियम में असां कवरेज करण वियासीं
2: त
3: उते म्युनिसिपल कार्पोरेशन पारां शानदार जेको आहे तकलीफ़ थी जंहिंमें ॿारनि टेबलोस पेश कया, क़ौमी नगमा जेको आहे पेश कया विया, तकीरूं थियूं ऐं पंहिंजे मुल्क खे जेको जी आज़ादी जे हवाले सां ख़ूबसूरत ॿारनि जेको आहे ख़िताब कयो ऐं पंहिंजे मुल्क जी आज़ादी ख़ुशी ॿुधाई ऐं ॿार एतिरा ख़ुशि हुया जो तव्हां सोचे नथा सघो। त अॼु असांखे ख़ुशी वॾी आहे, तमामु वॾो ॾींहुं आहे ऐं तमामु घणो ख़ुशि आहियूं नेमत साईं।
2: वॾी महिरबानी सर। असांजा हनीफ सुहाग साहब, तव्हां जनरल सेक्रेटरी आहियो आर्ट काउंसिल लाड़काणे जा ऐं सीनियर सहाफ़ी बि आहियो, माशाला ज़बरदस्त तव्हां ॼाणनी सर। तव्हांखे असां वरी बि तव्हांजो शुक्रिया अदा कयूं पिया तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। महिरबानी सर, वॾी महिरबानी। अॼु असमें असांजो सीनियर सहाफ़ी ऐं आर्ट काउंसिल लाड़काणे जा जनरल सेक्रेटरी तमामु बहितरीन इंसान हनीफ सुहाग सां ऐं बिल्कुलु इहा पाकिस्तान जेके आहे।

प्रोग्राम ऐं ख़ुसूसी त तव्हां असां ॾे मुबारकूं लिखी मोकिले सघो था मोबाइल जे राइट ऑप्शन में, ऐं तव्हां असां ॾे राइट ऑप्शन में ईंदव मोबाइल जे में, उते एल आर के लिखी स्पेस ॾेई तव्हां पंहिंजो नालो तव्हां जी जेका आहे नंबर आहे 0333221888 साढे ॾींदासीं कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़।

0: इट्स डन।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
0: इट्स 10:30 AM, व्हाट डू यू बाय?
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम,
3: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा सना और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत 14 अगस्त मुबारक हो। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, हमें ये समझने की बहुत जरूरत है कि अगर पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारी जो यूथ है, जो 65% है ऑफ द पॉपुलेशन, हमें ये सोचना चाहिए कि यूथ को हमने किस तरह से अपना एसेट बनाना है। सोच के बाद हमें इस हिम्मत अमली बनाने की जरूरत है और फिर उसमें अमल पैरा होना भी बहुत जरूरी है।
0: दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान, हमारा देश हमारा मान, दिल जान पाकिस्तान, दिल जान पाकिस्तान।
2: वेलकम, मेरा नाम है अहमद जानसेब।

अॼु असमिन प्रोग्राम आज़ादीअ रंग में पाण वापसि अची चुका आहियूं ऐं पाण मुबारक ॾियूं पिया जशन आज़ादी जो ऐं 14 अगस्त 2026 आहे ऐं तव्हां सां असां गॾु आहियूं ऐं जिन दोस्तनि असांखे यादि कयो उन जा बि नाला खणंदासीं ऐं जिन दोस्तनि नाला लिखाया आहिनि फेसबुक ते SMS ज़रिए ऐं कॉल ज़रिए उन जा बि नाला ज़रूरु खणंदासीं ऐं तव्हां असांखे पंहिंजो वक़्तु कढी पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो आहे जिन बि दोस्तनि उन जूं वॾी महिरबानी ऐं सभिनी खे जशन आज़ादी जूं मुबारकूं साईं जा आज़ादी हर इंसान जो बुनियादी हक़ आहे कंहिं बि मुल्क कंहिं बि क़ौम या कंहिं बि माण्हूअ खे इहो कतई हक़ कोन्हे त हू कंहिं बि मुल्क क़ौम या माण्हूअ खे ग़ुलाम बनाए उन जे वसीलनि माल मिल्कियत ते कब्ज़ो करे उन खे मज़लूम करे छॾे आज़ादीअ लाइ जिदोजहद कंदड़ फर्द मज़लूम ऐं महकूम क़ौमनि जा अनमोल हीरा हूंदा आहिनि वतन ऐं वतन जे माण्हुनि जे हक़नि लाइ जेके बि माण्हू मैदान ते निकिरी ज़ुल्म ॾाढ ऐं जबर ख़िलाफ़ उथी बीहनि था ऐं बुलंद आवाज़ कनि था ज़ुल्म खे ज़ुल्म चवनि था उन्हनि जा नाला तारीख़ में सोनहरी अखरनि सां लिखिया वञनि था ॿिए तरफ़ बावकार माण्हू क़ौमूं वतन जे आज़ादीअ लाइ वेड़ कंदड़नि खे पंहिंजे अखियुनि ऐं जीअ में जायूं ॾींदड़ आहिनि छो जो उन्हनि जो रुतबो उत्तम ऐं आला हूंदो आहे तसमिन आज़ाद मुल्क आहे ऐं आज़ादीअ जो हक़ीक़त में उन खां ई क़दुरु पुछो जेके वीचारा आज़ाद न आहिनि त साईं जा हिकड़ो पंहिंजो क़ौमी गीत ॿुधूं पिया वरी बाद में अव्हां जा नाला खणंदासीं।

0: एफएम नेटवर्क एटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 11:15 AM.
2: This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करने में आ...

0: ने नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
1: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
3: झंडे
4: दिल जान पाकिस्तान
5: जश्न आजादी पर कह रहे हैं सब आवाम
4: दिल जान पाकिस्तान दिल जान पाकिस्तान
5: जश्न आजादी पर कह रहे हैं सब आवाम
4: दिल जान पाकिस्तान
3: दिल और जान से बनाते हैं क्योंकि हमारा आजादी का दिन है इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है कोई दिन नहीं है ये एहसास दिलाता है दिन के हमें इससे पाकिस्तान से वरना कुछ भी नहीं
6: हम लोग यानी यूनिवर्सिटीज में फंक्शन वगैरह होते हैं वो अटेंड करते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और लाइक घर में सजाना उठना कपड़े अच्छे पहनना ये सब कुछ होता रहता है पूरे दिन बेहतरीन किस्म का दिन है हमें अपनी मुकम्मल तौर पर आजादी है कि हम हर जगह जा सकते हैं अपने इबादत कर सकते हैं सब काम अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं
7: ऐसी आजादी नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता हम भी नहीं होते आप भी नहीं होते इसका ख्याल करें आप अल्लाह पाक ने हमें तोहफा दिया है
8: हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत की है और जदोजहद करके कुर्बानियां देकर ये वतन हासिल किया है तो हमें चाहिए कि इस मुल्क का ख्याल रखिए
9: दिल जान पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद
4: दिल जान पाकिस्तान
10: इट्स 11:30 AM दिस टाइम चेक
4: दिल जान पाकिस्तान
5: जश्न आजादी पर कह रहे हैं सब आवाम
4: दिल जान पाकिस्तान
3: दिल और जान से बनाते हैं क्योंकि हमारा आजादी का दिन है इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है कोई दिन नहीं है ये एहसास दिलाता है दिन के हमें इससे पाकिस्तान से वरना कुछ भी नहीं है
6: हम लोग यानी यूनिवर्सिटीज में फंक्शन वगैरह होते हैं वो अटेंड करते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और लाइक घर में सजाना उठना कपड़े अच्छे पहनना ये सब कुछ होता रहता है पूरे दिन बेहतरीन किस्म का दिन है जगह जा सकते हैं अपनी इबादत कर सकते हैं सब काम अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं
7: ऐसी आजादी नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता हम भी नहीं होते आप भी नहीं होते इसका ख्याल करें आप अल्लाह पाक ने हमें तोहफा दिया है
8: हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत की है और जदोजहद करके कुर्बानियां देकर ये वतन हासिल किया है तो हमें चाहिए कि इस मुल्क का ख्याल रखिए
9: दिल जान पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद
4: दिल जान पाकिस्तान दिल जान दिल जान पाकिस्तान
5: जश्न आजादी पर कह रहे हैं सब आवाम
4: दिल जान पाकिस्तान
3: दिल और जान से बनाते हैं क्योंकि हमारा आजादी का दिन है इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है कोई दिन नहीं है ये एहसास दिलाता है दिन के हमें इससे पाकिस्तान से वरना कुछ भी नहीं
6: हम लोग यानी यूनिवर्सिटीज में फंक्शन वगैरह होते हैं वो अटेंड करते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और लाइक घर में सजाना उठना कपड़े अच्छे पहनना ये सब कुछ होता रहता है पूरे दिन बेहतरीन किस्म का दिन है जगह जा सकते हैं अपनी इबादत कर सकते हैं सब काम अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं
7: ऐसी आजादी नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता हम भी नहीं होते आप भी नहीं होते इसका ख्याल करें आप अल्लाह पाक ने हमें तोहफा दिया है
8: हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत की है और जदोजहद करके कुर्बानियां देकर ये वतन हासिल किया है तो हमें चाहिए कि इस मुल्क का ख्याल रखिए
9: दिल जान पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद
4: दिल जान पाकिस्तान दिल जान दिल जान पाकिस्तान
5: जश्न आजादी पर कह रहे हैं सब आवाम
4: दिल जान पाकिस्तान
3: दिल और जान से बनाते हैं क्योंकि हमारा आजादी का दिन है इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है कोई दिन नहीं है ये एहसास दिलाता है दिन के हमें इससे पाकिस्तान से वरना कुछ भी नहीं
6: हम लोग यानी यूनिवर्सिटीज में फंक्शन वगैरह होते हैं वो अटेंड करते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और लाइक घर में सजाना उठना कपड़े अच्छे पहनना ये सब कुछ होता रहता है पूरे दिन बेहतरीन किस्म का दिन है जगह जा सकते हैं अपनी इबादत कर सकते हैं सब काम अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं
7: ऐसी आजादी नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता हम भी नहीं होते आप भी नहीं होते इसका ख्याल करें आप अल्लाह पाक ने हमें तोहफा दिया है
8: हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत की है और जदोजहद करके कुर्बानियां देकर ये वतन हासिल किया है तो हमें चाहिए कि इस मुल्क का ख्याल रखिए
9: दिल जान पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद
4: दिल जान पाकिस्तान दिल जान
11: हर तान पाकिस्तान
4: अफसार अहमद के साथ
12: 1971 के बाद मशरिकी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान गिटारिस्ट पाकिस्तान की मोहब्बत में अपने अहलो अयाल को छोड़कर पाकिस्तान चला आया। اس نے پاکستان کے مردم خیز شہر کراچی

का रुख किया और यहाँ पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज पर गिटार से ताने उड़ाने लगा, लेकिन उसकी आवाज में भी एक स्पार्क था, इसीलिए वो टीवी स्टेशन में कभी कभी गाने की मशक भी किया करता था। एक दिन प्रोग्राम संडे के संडे में कोई गुलूकार नहीं आया तो टीवी फनकार मोहम्मद इब्राहिम साहिब के कहने पर उस नौजवान गुलूकार को मौका दिया गया, जिसने अपनी आवाज के जरिए आवाम के दिल जीत लिए और फिर उसने जल्द पाकिस्तान की तान यानी कौमी नगमा भी गाकर खुद को कौमी गुलूकारों की फहरिस्त में शामिल करवा लिया। ये आवाज थी हमारे लेजेंड गुलूकार आलमगीर साहिब की। आलमगीर ने अपना पहला कौमी नगमा 1975 को गाया, जिसे असद मोहम्मद खान साहिब ने तहरीर किया था। फिर आलमगीर की जोशीली आवाज में कौमी नगमात बनना शुरू हुए। आइए समाप्त करते हैं अपने इस अजीम फनकार की आवाज में पाकिस्तान की तान, जिसे अल्फाज का जामा पहनाया था मरहूम जमीलुद्दीन आली ने। ये नगमा दरअसल सुबाइयत और लिसानियत के मारों के मुंह पर एक थप्पड़ था, जो कहते थे कि सानिया मशरिकी पाकिस्तान के बाद नजरिया पाकिस्तान खत्म हो गया है। लेकिन आली जी से रहा नहीं गया और उन्होंने फौरन पाकिस्तान को अल्लाह की देन बताकर अवाम को मुतवज्जो किया और कहा कि पाकिस्तान को समझो लोगो, पाकिस्तान खुदा का है। ये नगमा पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज पर निसार बज़मी साहिब की मौसिकी में तैयार हुआ। इससे कबल यही नगमा सुभान राठर और मोहम्मद इब्राहिम साहिब ने रेडियो पाकिस्तान कराची के लिए भी गाया था और फिर खालिद वहीद ने भी इस नगमे को बज़मी साहिब की मौसिकी में गाया। लेकिन आलमगीर की आवाज में ये पाकिस्तान की तान आज भी गूंजती है तो हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान का चेहरा दिल से देखने पर मजबूर करती है कि इस पर आंख जो उठी है खुद बरसों तक रोई है। इसका तसव्वुर, इसका खमीर ईमान और वफा का है। पाकिस्तान को समझो लोगो, पाकिस्तान खुद

0: It's 11:30 AM. This soundtrack is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आज अपनाए आज ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पॉटलेस और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आज ब्यूटी क्रीम.
2: जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद. हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर. जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जो रोटाणो छटाई करण में आसान, ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार. सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधायो.
0: अगर खूबसूरती खपे त आर्ट्स अपनायो. आर्ट्स ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा ऐं एवोकाडो अव्हां जी सेंसिटिव स्किन खे अंदर.
2: हिन मिटीअ जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद. हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर. जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार. सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए.
0: अगर खूबसूरती खपे त आर्ट्स अपनायो. आर्ट्स ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा ऐं एवोकाडो अव्हां जी सेंसिटिव स्किन खे अंदर खां रिपेयर करे

0: 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक।

0: हिन मिटीअ जा रंग रौनकू ऐं असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया, आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो, छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिटीअ जो मान वधाए।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।

0: के साथ तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया जैसे मोटी जरूरतों छकाई करने में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाब करे फसल की अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधिंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: छा तवा जो ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बनजन तपई तवा लाए आए एक बेहत

0: वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं आजादी की बहार, आजादी स्पेशल ट्रांसमिशन. आपका और मेरा साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है. कोमल भी हमारे साथ मौजूद है. जी कोमल.
1: जी बिल्कुल, मैं भी आपके साथ ही हूँ, आपके साथ साथ ही रहूंगी. अच्छा, ये तो आजादी के ऊपर हम बात कर रहे थे कि अच्छा आप ये बताओ रुखसार कि मैं अपने सुनने वाले लिसनर से भी ये बात कहूंगी कि हम जब अपने टाइम में जब स्कूल्स या फिर स्टूडेंट लाइफ में हम सेलिब्रेट करते थे, उसमें और आज के दौर में कोई फर्क दिखता है आपको सेलिब्रेशन में?
0: सेलिब्रेशन में फर्क हाँ थोड़ा बहुत दिखता है. हो सकता है कि हम लोगों की उम्र का तकाजा हो कि हम लोग बड़े हो गए और उस तरीके से वो क्यूरियसिटी नहीं रही.
1: हम बता रहे हैं, हम जब बच्चे थे या जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, हम झंडियां लेते थे जो मिलती थी उसकी, जंजीर बनाना, घर को डेकोरेट करना. आजकल मैंने वो चीज नहीं देखी.
0: इवन अपनी क्लासेस को भी हम जो है ना
1: मतलब से सारे कंट्रीब्यूट करके सजाते थे स्कूल को.
0: वो झंडियां नहीं हमें आज नजर आ रही और मेरे ख्याल से वो बनी बनाई मिलती हैं और वो हम लगा लेते हैं.
1: झंडियों की जगह ना वो जो आजकल बाजा चल रहा है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है.
0: अच्छा, ये हमारे बचपन में था. मेरे ख्याल से मैंने कोई एक दो बार इसको जो है ना बाजे को लिया होगा और लेने के बाद ना
1: जरूर, लेकिन ना हमें मिलता नहीं था. हम झंडियों में खुश थे, हमारे घर वाले भी हमें रखते, लेकिन आजकल के बच्चों के या पेरेंट्स नहीं, बच्चों की नहीं सुनते क्या है कि वो बच्चों को दिला रहे और ये भी नहीं समझाते भाई किसी के घर में कोई बीमार है, कोई परेशान है, किसी को नहीं अच्छा लग रहा, आकर बिल्कुल कान के पास करीब से बजा के जाते.
0: बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. और ये वाकई है. और ये बाजा जो है ना ये बहुत ज्यादा मतलब किसी को ये हार्ट पेशेंट भी हो सकता है मतलब, लेकिन बच्चों का फन है.
1: लेकिन एक तो कुछ वक्त के सामने बड़ा भी बहुत हो गया है.
0: बिल्कुल, वक्त के सामने बड़ा भी बहुत हो गया है. छोटे बड़े जितने भी हो लेकिन साउंड वो एक जैसा करता है और एक जैसा बचता है.
1: मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है. और मेरे घर में जब बच्चे वो बजाते ना आकर छेड़ेंगे, जानकर ही करते हैं.
0: चले हम ये हम लिसनर्स के साथ करते हैं. और मेरे ख्याल से हमने जो स्टूडियो में डेकोरेशन किए, काश उसमें एक बाजा निकल आए.
1: नहीं, बाजा मुझे लग रहा है कि रुखसार ये कराएगी बाजा.
0: नहीं, मैं देखती हूँ कि कहीं से निकल आए.
1: ऐसे मैंने अपना व्हाट्सएप पर स्टेटस अपडेट किया तो ना, अब क्या नाम है, मुझे मेरी फ्रेंड ने एक वॉइस सेंड करी. मैंने कहा पता नहीं शायद क्या इसने सेंड करा है मुझे, तो ना मैंने उसको लेकर साउंड बिल्कुल तेज था. मैंने यू करके कान पे लगा, इतनी जोर से बिल्कुल आवाज में एकदम बाजे की आवाज आई ना बस. फिर उसके बाद मैंने उसको बहुत सुनाई.
0: चले जबरदस्त. और ये मजीद सुनने सुनाने वाले किस्से हम जरूर छेड़ेंगे, लेकिन एक अदद न्यूज ब्रेक के बाद, क्योंकि न्यूज ब्रेक का टाइम हो चुका है. ठीक है कोमल, तो हम
1: जरूरी न्यूज ब्रेक तो चले, कहाँ कहाँ सेलिब्रेशन हो रही है भाई पाकिस्तान.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, न्यूज ब्रेक की तरफ चलते हैं और वापस आते हैं. आप सुन रहे हैं आजादी की बहार स्पेशल ट्रांसमिशन. स्टे ट्यून्ड.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर बिच्चिए जो मान बताए.

इन समेत समूरे मुल्क में 79 जश्न आज़ादी कौमी ऐं जोश जज़्बे सां मल्हायो पियो वञे। इस्लामाबाद में 31 तोहफ़नि ऐं सूबाई राजधानियुनि में 21 तोहफ़नि जी सलामीअ सां ॾींहं जी शुरूआति मुल्की सलामती ऐं ख़ुशहाली लाइ ख़ुशी दुआऊं बि घुरियूं वयूं। सरकारी ऐं निजी इमारतनि ते क़ौमी परचम बि फड़काया विया। सिंध समेत समूरे मुल्क में जश्न जूं तकरीबूं, आज़ादी जी ख़ुशीअ में केक बि काटिया विया। नौजवाननि नारनि ॿुधनि ऐं ॿारनि पारां वतन सां मुहबत जो भरपूर इज़हार करण जो सिलसिलो जारी।

सिंध मुतहद हुई ऐं रहंदी सूबनि वारो बहस नओं नाहे। सूबे जूं ॻाल्हियूं कंदड़ परडे भॼी वेंदा आहिनि या पाण में विढ़ी पवंदा आहिनि। मज़ार काए ते हाज़िरीअ बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध असेंबली सिंध जे सरहदनि बाबति केतिरा ई भेरा ठहराउ मंज़ूर करे चुकी आहे। सूबनि जूं ॻाल्हियूं कंदड़ भले पंहिंजो शौक़ पूरो करे ॾिसनि, सूबनि में क़याम वारो तरीक़ो आइन में मौजूद आहे, सिस्टम बि नाकाम नाहे थियो, खामियूं थी सघनि थियूं।

सिंध समेत समूरे जश्न आज़ादी के मौके ते रैलियूं तकरीबूं ऐं मेड़ाका कराची हैदराबाद सकर लाड़काणे मीरपुर खास में जश्न आज़ादी रैलियूं बदीन खैरपुर नवाबशाह सांगर ठटो टंडो मोहम्मद खान ऐं ॿियनि शहरनि में तकरीबूं कंदकोट टंडो जाम तलार नबीसर रोड टंडो आदम फेज़गंज वगुण ऐं ॿियनि शहरनि में रैलियूं दादू मिठी खैबर खितरो सामारो ऐं ॿियनि शहरनि में बि जश्न आज़ादी जूं तकरीबूं।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखन जे मुकाबले में ए जबरदस्त हवा रॉयल इन्वर्टर।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

बिन मर्जे को चा तकबीर खटेंदे हिको सबक पढ़ियो ने तड़फावण दा आया परदेसी पखी इथा चोग चुगण थिया कैद परो के सावण दा ओ बिस्मिल शाह जिंद निकल वे सही केड़ा फायदा

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान बे नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
4: सोना सेहत कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
5: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।

0: Okay, so welcome back once again. आप सुन रहे हैं आजादी की बहार, आजादी स्पेशल ट्रांसमिशन, और आप और मैं साथ साथ हैं, और कोमल भी, कोमल और मैं आपके साथ साथ हैं पूरी पूरी एक बजे तक आपको और मेरा साथ है। जी कोमल
1: जी, बिल्कुल। तो हम लोग बात करते हैं आजादी के हवाले से यार के, अच्छा मतलब हम बात कर रहे थे झंडियों के ऊपर,
0: झंडियों के ऊपर बात कर रहे थे बिल्कुल।
1: तो और आप लोग बताएं भाई, अपने बच्चों के आपने जो है क्या क्या दिलाया और आपने किस तरीके सेलिब्रेशन की, ये भी हमारे साथ शेयर करें, हम भी आपके साथ शेयर करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और शेयर करने के लिए आप लोग मुझे नहीं, सॉरी मुझे नहीं, हमें कमेंट कर सकते हैं
1: और कॉल भी कर सकते हैं।
0: हाँ, कॉल भी कर सकते हैं, 8881 पे भी आप लोग मुझे मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। और कॉल्स हम लेना स्टार्ट करते हैं जी आप लोगों की, बहुत सारी कॉल्स आना शुरू हो चुकी हैं हमें। और कॉल्स के साथ साथ ना हम क्या करेंगे, आप लोगों से बात करेंगे। तो हमारा लाइव कॉलिंग नंबर जिन लोगों को नहीं पता, 03000113488, इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। हेलो,
1: हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से?
2: जी सर, सरासर गुलाम मोहम्मद नसीराबाद से बात कर रहा हूँ।
0: कैसे भाई, ठीक ठाक?
2: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक?
1: सबसे पहले हमारी तरफ से, मेरी और साल की तरफ से, और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको इंडिपेंडेंस डे
0: बहुत
2: शुक्रिया। आपको भी मेरी तरफ से जश्न आजादी की बहुत बहुत मुबारक हो।
1: अच्छा जी, ये बताएं आप किस तरीके से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं?
2: जी हम ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, झंडे वगैरह लगा कर और मिली नगमे सुनकर अपना जो मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं अपने वतन से।
1: अच्छा, हमारे साथ प्रोग्राम भी इंजॉय कर रहे हैं?
2: जी जी बिल्कुल।
1: ये आपने नाम ही नहीं लिया ना?
2: जी जी जी सर, प्रोग्राम एंजॉय कर रहा हूँ ना, प्रोग्राम में। अच्छा। मिलनक में जो है वो प्रोग्राम में ही चल रहे हैं ना, जाहिर सी
0: अच्छा,
2: बात है।
0: झंडियाँ लगाई हैं आपने?
2: जी जी।
0: कहाँ लगाई हैं?
2: अपने घर में।
1: अच्छा, ये बताएं आपकी मतलब बचपन की जो मतलब आप स्टूडेंट लाइफ में थे वो अच्छी थी या फिर ये वाली 14 अगस्त में क्या फर्क है आपके लिए, आपने क्या देखा इतने अरसे में?
2: जी स्टूडेंट लाइफ वो तो बहुत बेहतरीन थी, जाहिर सी बात है, बच्चों के साथ खेलना कूदना और अब तो और बात है।
1: बिल्कुल,
0: चलें जबरदस्त, बच्चों के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं और झंडियां भी लगाई हैं। और थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
2: जी अल्लाह
0: अल्लाह हाफिज जी। और ये थे कॉलर 03000113488, इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग, तो कॉल कीजिए। और साथ साथ बहुत सारी कॉल्स आप लोगों की हमें रिसीव होंगी। और नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से?
3: मोहम्मद ताहिर।
0: मोहम्मद ताहिर कैसे हैं, ठीक ठाक?
3: अल्लाह पाक, आप कैसे हैं?
0: जी मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे बताइएगा कि आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं?
3: जी
0: ओके, कैसे कर रहे हैं?
3: आज हमारे गवर्नमेंट बॉयज हाई किताब वगैरह।
0: चले जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं 14 अगस्त कब आती है?
3: 14 अगस्त
0: कौन सी तारीख को आती है?
3: हेलो
0: जी जी, 14 अगस्त कौन सी तारीख को आती है?
3: 14 अगस्त
0: को। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके जबरदस्त। और थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे ख्याल से कोमल हम ना ऐसा करते हैं, अगले कॉलर से ना हम सुनते हैं मिली, नहीं मिली नगमा नहीं, कौमी तराना। अब पता चलेगा
1: आप सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: हाँ जी, और मैंने सोचा है कि आप मुझसे कौमी तराना जरूर सुनूंगी। मुझे तो खैर आता है, लेकिन मैं देखूंगी कि लोगों को आता है कि नहीं।
1: मतलब स्कूल तक की हद में होता था, लोग डेली हम एक रूटीन में इसको पढ़ते थे, ठीक है ना? उसके बाद जैसे जैसे वक्त बढ़ता है लोग दूर हो जाते हैं, इस चीज से ध्यान ही नहीं देते।
0: नहीं, दूर होने की बात ही नहीं है कि एक चीज नहीं, हमारे कंट्री का नेशनल एंथम है, ये तो आपको एनी हाउ जो है ना याद होना चाहिए। और ये आपकी नेशनैलिटी की पहचान है। जब आप स्कूल में जाते हैं आपको सिखाया जाता है, डेली जब आप जाते हैं स्कूल में असेंबलीज होती है, वहां पे सबसे पहले कौमी तराना पढ़ा जाता है। और वो इसलिए पढ़ा जाता है कि हर बच्चे को बचपन से जो है ना

0: आता है,
1: सुना दे बस।
0: पाकिस्तान पाकिस्तान
1: नहीं नहीं भी कराना जो हम किताबों में पीछे बैठे।
0: अच्छा, हम तो किताब बना रहे, हमारे को नहीं आता है
2: किताबों वाला, नहीं आता,
1: नहीं पढ़ा।
2: वेरी बैड। चलो कोई बात नहीं, और कुछ कहेंगे?
0: हाँ हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी तो मैं वफा अब्दुल भाई जो अगेन काल दोपहरी में मिलाई है, मेरे पास है कुछ भाई है।
2: चले नगमा आपको सुनाते हैं, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। और 03000113488। अच्छा, कौमी तराना सुनाना है, पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं सुनाना, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
2: इस्माक किशोर, कैसे ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आपको जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक।
3: आपको भी।
2: ओके, कराची में आप इस वक्त?
3: जी बिल्कुल।
2: सेलिब्रेशन हो रहा है, कैसी चल रही है सेलिब्रेशंस वगैरह?
3: फिलहाल तो अभी उठा हूँ।
1: अच्छा, अभी उठे, आदर्श में हमारा मिस कर दिया।
3: हाँ, मैंने डायरेक्ट कॉल लगाई।
2: ओके ठीक है जी। अच्छा, कोई मिली नगमा सुनाएंगे, या अगर कौमी तराना आता है तो कौमी तराना सुना?
1: हाँ, कौमी तराना की कोई लाइन सुना दे, स्टार्ट ही बता दे।
3: ये मेरे वतन
2: नहीं नहीं कौमी तराना, पाक सर जमीन शाद बाद।
3: अगर नहीं नहीं इसमें अगर मिस्टेक होगी तो
2: मिस्टेक होगी ना, वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे।
1: अच्छा ये बताइए,
3: याद करके जो आया हूँ वही।
1: अच्छा चले, ये
2: चले चले आप सुना दे।
1: कौमी तराने की पहले धुन बनी है या फिर तराना लिखा गया है,
2: ये बताएं?
3: पहले धुन
1: कन्फर्म है, पहले धुन बनी है?
3: कन्फर्म तो नहीं पता लेकिन दुखन है।
1: बिल्कुल सही बात है, पहले धुन बनी है कि हमारा तराना वो है कि पहले जिसकी धुन बनी है फिर वो लिखा गया है।
2: अरे वाह, क्या बात है,
3: मतलब तुक्का लग गया।
1: अच्छा तुक्का लगा था, मैंने अब आपको कंफर्म कर दिया। अच्छा आप अब स्टार्ट करें कौमी तराना।
2: चलो नहीं, असल में उन्होंने मिली नगमा सुनाना है। सुना,
1: मेरे भी प्रोग्राम में बहुत आते थे इनके कॉमेंट।
2: अच्छा, ये वही वाले
1: अभी तक कह रही।
2: ओके
3: ओके,
1: कमल मेरे मैसेजेस नहीं पढ़ती
2: बस।

0: कर दूं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं?
0: बस खुश रहें, खुश रहने दें।
2: थैंक यू सो मच। बहुत सारा ख्याल रखें अपना, हाफिज। और इसी के साथ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हम लेते हैं।
1: लेना पड़ेगा
2: कोमल, लेना पड़ेगा,
1: लेना पड़ेगा। मुझे लिस्टर्स कहते हैं कि आप लोग बहुत ब्रेक लेते हो।
2: हाँ, आज हम दोनों साथ में ना, इसलिए हमें जो है ना ब्रेक ज्यादा लग रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि हम
1: बहुत बातें कम हो रही है,
2: हमारी बातें कम हो रही है। चलें खैर, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, आजादी की बहार स्पेशल ट्रांसमिशन।

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मोरो में छातीअ जी तकलीफ़, दम या साह ऐं छातीअ जी बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर काशिफ अली बबर MBBS FCPS पल्मोनोलॉजी माहिर अमराज फिफड़ ऐं छाती टीबी नमूनिया कोरोना दम एलर्जी फर सिगरेट नोशीअ खां जन जे वधण मोटापे सबबि पैदा थींदड़ मुकमल इलाज हिते जदीद तरीन फिफड़नि जी स्पायरोमेट्री टेस्ट जी सहूलियत पिण मौजूदु आहे. टाइम हराचर ते सुबुह जो 9 बजे खां मंझंदि 12 बजे ताईं. अपेंडिक्स, गुर्दे जी पथरी, बवासीर, हरनिया

ॿियनि बीमारियुनि जो माहिर ऐं मशहूर जनरल सर्जन डॉक्टर सलाम खान ज़रदारी, MBBS FCPS असिस्टेंट प्रोफेसर ऐं जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, अपेंडिक्स, गुर्दे जी पथरी, बवासीर, हरनिया ऐं ॿियनि बीमारियुनि जा ऑपरेशन जदीद तरीक़े सां कया वञनि था। टाइम हर आचर ते सुबुह 9 वॻे खां मंझंदि 1 वॻे ताईं। एड्रेस: दस्तगीर आर्थोपेडिक एंड ट्रामा कॉम्प्लेक्स, बांदी रोड, मोरो। हाणे राब्तो करियो सैयद गुलाम मुर्तज़ा शाह, एडमिनिस्ट्रेटर, 0321-8484-94 and 0304-037-3081। असां योम आज़ादी 14 अगस्त जे पुरमुसरत मौके ते सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, पीपल्स पार्टी चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, पीपल्स पार्टी लेडीज विंग जे सदर मोहतरमा मैडम फरियाल टालपुर साहिबा, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, पाक फौज, होम मिनिस्टर सिंध ज़ियाल हुसैन लंजार, जेल खाना मिनिस्टर अली हसन ज़रदारी, सिंध असेंबलीअ जो मेंबर मुमताज़ अली चांडियो, पीपल्स पार्टी ज़िला चेयरमैन सुहेल अख़्तर अब्बासी ऐं मुहब वतन खे मुबारकबाद पेश करियूं था। पारां अब्दुल करीम पंवर, पीपल्स पार्टी अॻवान ऐं UC ठट जो चेयरमैन, ऐं वसीम अहमद पंवर।

असां जश्न आज़ादी जे पुरमुसरत मौके ते सदरे पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फील्ड मार्शल, पाकिस्तान आर्मी जे जवाननि, बांदी ऐं भरपासे जी अवाम, समूरी सिंध ऐं वतन अज़ीज़ जे अवाम खे दिल जे गहराइयुनि सां मुबारकबाद पेश करियूं था। पारां डॉक्टर अली बश्क उमराणी, बांदी।

0: हर तान पाकिस्तान
1: अबसार अहमद के साथ।
2: परचम हमारी मिल्ली और दीनी रिवायत का अमी है। यही परचम है जिसने मिल्लत का वकार बुलंद किया। यही परचम है जो हमारी अजमतों का पासबां और हमारी रफातों का निशान है। पाकिस्तान की ताने आजाद वतन में गूंजी तो उनमें परचम की ताबानी और सब्जो सफेद रंगत की फड़फड़ाहट भी शामिल थी। परचम पर बेशुमार कौमी नगमात बने और अब भी बन रहे हैं। पाकिस्तान का पहला कौमी नगमा जैसे मुनव्वर सुल्ताना और दिलशाद बेगम ने गाया था, उसका उनवान भी परचम ही था। इस तरह मुनव्वर सुल्ताना, जिनकी लीडिंग वॉइस में ये नगमा था, पाकिस्तान की पहली कौमी गुलुकारा बन गईं। आप माजी में जाएं और उन लम्हों को मौसीकी और तानों में महसूस करें तो कयाम पाकिस्तान के लम्हात आपको अपने दिल की निगाह से दिखाई देंगे। जब लुटे हुए काफले पाकिस्तान आ रहे थे, मगर सब कुछ लुटने के बावजूद भी पाकिस्तान यानी पाक सरजमीन में आने की ऐसी खुशी थी कि गम की कोई भी परछाई चेहरे पर न थी। और जब वो काफले अमृतसर से लाहौर पहुंचते हैं तो यहाँ रेडियाई लहरों से शौकत थानवी के अल्फाज सुनाई देते हैं कि चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे, तो यकीनन हर आंख अश्कबार हो गई होगी। मौसीकी में ढले चश्मे तसव्वुर से ये हम मंजर बखूब देख सकते हैं कि गुलाम कादिर फरीदी की मौसीकी में तीन अंतरों पर मुश्तमिल ये नगमा सिर्फ एक नगमा और परचमे वतन से मोहब्बत का इजहार ही नहीं, बल्कि एक रियासत से अज़्म का इकरार भी था। आइए समाप्त करते हैं पाकिस्तान का ये पहला कौमी नगमा, जो 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब लाहौर रेडियो से अयूब रुमानी साहिब की पेशकश में गूंजा और अब तक इसके 4 रीडू भी तैयार हो चुके हैं।

मुल्की सियासी क़यादत जो आज़ादीअ जे 79 ॾिण ते क़ौम खे वाधायूं। क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिना समेत समूरनि बानियुनि खे भेट आपे। सदर आसिफ ज़रदारी चयो त 14 अगस्त आज़ादी लाइ ॾिनल क़ुर्बानी खे यादि करण जो ॾींहुं आहे। सभिनी खे गॾिजी मुल्की दिफ़ा लाइ कम करणो पवंदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त क़ाइदे आज़म जे ॾिनल नज़रिये तहत मुल्क खे खुशहाल ऐं तरक़ी याफ़्ता बणायो वेंदो। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो त आज़ाद बुज़ुर्गनि ऐं अज़ीम जिदोजहद जो समर आहे। हथियारबंद फ़ौजनि पारां 79 आज़ादी जे ॾिण ते क़ौम खे वाधायूं। फील्ड मार्शल नेवल ऐं एयर चीफ पारां क़ौम खे मुबारक ॾिनी वई। SPR चयो आहे त समूरनि ख़तरनि खे मुंहुं ॾियण ऐं वतन जी दिफ़ा वारो अज़म बरक़रार आहे। क़ौम सां गॾिजी हथियारबंद फ़ौज अमुन ऐं इस्तक़ाम लाइ साबित क़दम रहंदी। सिंध मुतहद हुई आहे ऐं रहंदी। सूबनि वारो बहस नओं नाहे। सूबे जूं ॻाल्हियूं कंदड़ परॾेह भॼी वेंदा आहिनि या पाण में विढ़ी पवंदा आहिनि। मज़ार काए ते हाज़िरीअ बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध असेंबली सिंध जे सरहदनि बाबति केतिरा ई भेरा ठहराउ मंज़ूर करे चुकी आहे। सूबनि जूं ॻाल्हियूं कंदड़ भले पंहिंजो शौक़ पूरो करे ॾिसनि। सूबनि जे क़याम वारो तरीक़ो आइन में मौजूद आहे। सिस्टम बि नाकाम नाहे थियो। ख़ामियूं थी सघनि थियूं। सिंध समेत समूरे जश्न आज़ादी जे मौके ते रैलियूं तकरीबूं रैलियूं ऐं मेड़ाका कराची हैदराबाद सखर लाड़काणे ऐं मीरपुर खास में जश्न आज़ादी जूं रैलियूं। बदीन खैरपुर नवाबशाह सांगर ठठो टंडो मोहम्मद खान ऐं ॿियनि शहरनि में तकरीबूं। कंदकोट टंडो जाम तलाड नबीसर रोड टंडो आदम फैज़गंज वगुण ऐं ॿियनि शहरनि में रैलियूं। दादू मिठी खैबर खिपरो समारोह ऐं ॿियनि शहरनि में बि जश्न आज़ादी जूं तकरीबूं होटायूं वयूं। तकरीबनि दौरान झंडा फड़काए केक काटिया विया। शागिर्दनि पारां टेबलोज़ पेश कया विया।

0: अमेरिका तरफां पाकिस्तानी कौम खे आज़ादी जे ॾिण ते मुबारकूं पेश कयां थो। अमेरिकी परडे॒ही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त अमेरिका ऐं पाकिस्तान गडि॒यल सहकार सां सलाहियतनि खे तरक़ी में तब्दील करे रहिया आहिनि। अॼोके ॾींहं ते पाकिस्तान सां भाईवारी मज़बूत दोस्ती वारो अज़म जो बि बचाव कयूं था।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: दिन के गरम तरीन वक्तन ते सुबह 11 वगे खां शाम 3 वगे ताई बाहर निकरण खां परहेज करियो। जोर बार वारे कम खां पासो करियो। सख्त गर्मी उस समय पंहिंजो मथो ढके रखो। गर्मी के दौरान छटरी ट्वाल पानी ऐं लीमो पानी पाण सां गॾु रखो। शदीद उस समय ॿाहिरि रांदि रूंद करण खां पासो करियो। ही पैगाम PDMA सिंध ज़िले इंतज़ामिया दादू स्टार्ट नेटवर्क हेंड्स ऐं RDF पारां पेश कयो वियो आहे।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
5: असां योम आज़ादी 14 अगस्त जे पुरमसरत मौके ते सदरे पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, पीपल्स पार्टी चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, पीपल्स पार्टी लेडीज़ विंग जे सदर मोहतरम

0: आप मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
1: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
2: सोना सेहत कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: DA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 3:30 PM। This time check is brought to you by।
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले इनका राज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अमेरिका तरफां पाकिस्तानी क़ौम खे आज़ादी जे ॾिण ते मुबारकूं पेश कयां थो। अमेरिकी परॾेहो चयो आहे त अमेरिका ऐं पाकिस्तान गॾियल सहकार सां सलाहियतनि खे तरक़ी में तब्दील करे रहिया आहिनि। अॼोके ॾींहं ते पाकिस्तान सां
1: Where do you stand?
2: Here, your trading finds peace. Step up with over 4.5 million traders worldwide who trust FTMO, backed by more than 45,000 reviews.
0: Pakistani kadman sa Europe mein gair qanuni hijrat 47% ghat thi hai. Gair qanuni hijrat ke khilaf kadman ji European Union bhi sara kai hai. Pakistan dehshatgardi hai duniya aado bhi. भित बणियल आहे। दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ सभु करणो पवंदो। अमेरिका जूं ईरान ते ख़तरनाक मोकिलण जो ऐलान। अमेरिकी नाणे वारे वज़ीर चयो आहे त तेहरान ख़िलाफ़ अहिड़ा क़दम खणणु वञी रहिया आहियूं जेके दुनिया पहिरें कॾहिं न ॾिठा हूंदा। अमेरिकी नायब सदर जे चयो आहे त ईरान खे पहिरीं तरजीह तेल जूं क़ीमतूं घटि रखण आहे।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
4: की मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
5: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
6: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
7: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niyat. Product by Bio.
2: और ज्यादा अफादियत सोना सेंटर से खर्च करें और इजाफी पैदावार के साथ
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए.
3: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में. डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो.

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.5
1: जदीद टेक्नोलॉजी सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान
2: आद सा कुरान प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते

जूं ॻाल्हियूं कंदड़ भले पंहिंजो शौक़ पूरो करे ॾिसनि। सूबनि जे क़याम वारो तरीक़ो आइन में मौजूदु आहे। सिस्टम बि नाकाम नाहे थियो, ख़ामियूं थी सघनि थियूं। सिंध समेत समूरे जश्न आज़ादी जे मौके ते रैलियूं, तकरीबूं, मेड़ाका, कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काणे ऐं मीरपुर खास में जश्न आज़ादी जूं रैलियूं, बदीन, खैरपुर, नवाबशाह, सांगर, ठटो, टंडो मोहम्मद खान ऐं ॿियनि शहरनि में तकरीबूं, कनको, टंडो जाम, तलार, नबीसर रोड, टंडो आदम, फेसगंज, वगुण ऐं ॿियनि शहरनि में रैलियूं, दादू, मिठी, खैबर, खिपरो, सामारो ऐं ॿियनि शहरनि में बि जश्न आज़ादी जूं तकरीबूं कोटायूं वयूं। तकरीबन दौरान झंडा फड़काए केक काटिया विया, शागिर्दनि पारां टेबलोज़ बि पेश कया विया। ईरानी सदर मसूद पज़िशान ऐं रूसी सदर व्लादिमीर प्यूटिन पारां 79 आज़ादी जे ॾींहं ते पाकिस्तानी क़ौम खे वाधायूं। ईरानी सदर मसूद पज़िशान चयो आहे त ईरान पाकिस्तान सां लाॻापन खे वधीक मज़बूत बणाइण वारे अज़म ते क़ाइम आहे। रूसी सदर प्यूटिन पारां बि पाकिस्तानी क़ौम खे वाधायूं ॾिनियूं वयूं। अमेरिका तरफ़ां पाकिस्तानी क़ौम खे आज़ादी जे ॾिण ते मुबारकूं पेश कयां थो। अमेरिकी परॾेही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त अमेरिका ऐं पाकिस्तान गॾियल सहकार सां सलाहियतनि खे तरक़ी में तब्दील करे रहिया आहिनि। अॼोके ॾींहं ते पाकिस्तान सां भाईवारी, मज़बूत दोस्ती वारे अज़म जो बि वर्चाउ कयूं था।

नॉर्वे जे परडेही वज़ीर जी घरु वज़ीर मोहसिन नकवीअ सां मुलाकात, ॿिन तरफ़नि लाॻापन समेत खिते जी सूरतयाल ते ॻाल्हियूं, गैर कानूनी हिजरत ऐं पुलिस ट्रेनिंग समेत मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। मोहसिन नकवी चयो आहे त पाकिस्तानी क़दमनि सां यूरोप में गैर कानूनी हिजरत 47% घटि थी आहे। गैर कानूनी हिजरत ख़िलाफ़ क़दमनि जी यूरोपीय यूनियन बि साराह कई आहे। पाकिस्तान दहशतगर्दी ऐं दुनिया आॾो बि वित बणियल आहे। दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ सभिनी खे गॾिजी कमु करणो पवंदो। अमेरिका जूं ईरान ते वधीक सख़्त ऐं ख़तरनाक मुआशी पाबंदियूं लॻाइण जो ऐलान। अमेरिकी नाणे वारे वज़ीर चयो आहे त तेहरान ख़िलाफ़ अहिड़ा क़दम खणण वञी रहिया आहियूं जेके दुनिया पहिरें कॾहिं बि न ॾिठा हूंदा। अमेरिकी नायब सदर चयो आहे त ईरान सां जंग में पहिरीं तरजीह तेल जूं क़ीमतूं घटि रखण आहे। मुतहदा अरब इमारतनि जो ईरान ते आबन हरमुज़ में ॿिन बहरी जहाज़नि ते हमले जो इल्ज़ाम। UAE पारां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे त ईरान आबन हरमुज़ जो अबू ज़हबी नेशनल ऑयल कंपनी जे ॿिन बहरी ॿेड़नि खे निशानो बणायो आहे। हमले जे नतीजे

दिन हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: से
1: जिस धरती से डाल
2: ये आवाज
1: नेक्स्ट
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
4: ये yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे।
1: सोना मिट्टी जो मान वधाई
2: जवान नारियन बुढ़न बारन पारा वतन सा मोहब्बत जो भरपूर इजहार करण जो गार्ड की तब्दीली जी

जश्न आज़ादी के मौके से बारन की तैयारी भी दिसण वटा बारन कौमी परचम जड़ा लिबास ओढ़े वरता मुख्तलिफ हंधन से कौमी गीतन से रक्स भी कयो वयो। नॉर्वे के परडे वजीर जे गरु वजीर मोहसिन नकवी से मुलाकात बिन तरफन लागापन समेत खिते की सूरतयाल से गाल गैर कानूनी हिजरत ए पुलिस ट्रेनिंग समेत मुख्तलिफ शोबन में सहकार वधायण से इतफाक। मोहसिन नकवी है तो पाकिस्तानी कदम से यूरोप में गैर कानूनी हिजरत 47 सैकड़ों घटती है। गैर कानूनी हिजरत खिलाफ कदम की यूरोपीय यूनियन भी सारा कई है। पाकिस्तान दहशतगर्दी ए दुनिया आलो में भित बनल है। दहशतगर्दी के खात्मे लिए सभी के गर्जी कम करो पव। अमेरिका जो ईरान से सख्त ए खतरनाक मुआशी पाबंद लगाने जो ऐलान अमेरिकी नाणे वाले वजीर है। तेहरान खिलाफ अड़ा कदम खण वही रहा हूं जेके दुनिया पे कदें भी न डिठा हूं। अमेरिकी नायब सदर है ईरान से जंग में पहली तरजीह तेल जो

0: तू घट रखण आहे। मुतादार बीमारतन जो ईरान ते आबना हरमुज में बिन बहरी जहाजन ते हमले जो इल्ज़ाम। यूएई पारां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे त ईरान आबना हरमुज में अबूज़ेबी नेशनल ऑयल कंपनी जे बिन बहरी बेड़नि खे निशानो बणायो आहे। हमले जे नतीजे में कंहिं जे बि ज़ख़्मी थियण जा इतलाउ न आहिनि मिलिया। कराची में वरी वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी मीडिया टॉक दौरान सूबाई वज़ीर इस्माइल राव जी तबियत खराब थी वई। चकर अचण बाद खे साथी वज़ीरनि सहारो ॾिनो। कराची खां हैदराबाद वेंदड़ थाणो गुला खान भरिसां कल्टी हिकु ॼणो फोत, सत ॼणा ज़ख़्मी। लोणीकोट थाणे जी हद 35 मील वटि मोटरवे ते मुसाफ़िर वेन कल्टी थी। हादसे जे नतीजे में हिकु ॼणो फोत थी वियो, सत मुसाफ़िर ज़ख़्मी थी पिया। फोती मुसाफ़िर जो मड़ ऐं ज़ख़्मियुनि खे तिबी इमदाद लाइ जामशोर इस्पताल मुंतकिल कयो वियो। ऐं दोदापुर वेझो बेगारी केनाल मां निकरंदड़ ताज़ा शाख ऐं पाणी हेठि अची खे नवी दोडो वाटर कोर्स वटां 30 फुट घारो पइजी वियो पियो आहे। फसल पाणी हेठि अची विया आहिनि ॻोठाणनि पारां।
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
2: جس کی فضاؤں میں ان کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم
3: ہر جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.0۔

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एश ब्यूटी क्रीम। खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं, बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: कैसी जिंदगी तुम्हें? क्या ये सजा है अमान को छोड़ने की?
1: मुझे लगता है तुम मुझसे शादी करके तो बहुत बड़ा तीर मार दिया तुमने। मेरी बेबसी और लाचारी की वजह से तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है।

0: मुझे अपनी जितनी सफाई देनी थी ना मैं दे चुकी हूँ। अब अपना सर काट के उनके कदमों में नहीं रखती।
1: तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से निकलने की तैयारी करनी चाहिए।
2: जो रिश्ते सुख देने के बजाय दुख देने लगे उनका टूट जाना ही बेहतर है।

0: छोड़कर चली गई।
1: मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैं कैसे जी रहा था।
2: गलती हो गई जो मैंने तुमसे शादी की।
3: तुम्हार मेरी बात सुन ले, नहीं तो बहुत पछताएंगे।
4: पछता ही तो रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, पछता रहा हूँ।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। जी एफ एम

0: की आवाज
1: DAFM नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो उधर।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हिन मिट्टी जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ी असांजे

0: हरि साईं ताहिनाबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे। सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए।
1: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो उतरदा रहो।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: आए दिन पीर की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: झंडो फिरो थी हुन पाकिस्तान
1: सफ़ा सही।
0: सो मां इहो पई चयमि त जेके जिंदा क़ौमूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि जे लाइ जेको आज़ादी जो ॾियारो हूंदो आहे न उहो इलाही अहमियत रखंदो
1: आहे।
0: सो असां बि आज़ाद क़ौम आहियूं ऐं असांखे पंहिंजे वतन सां प्यारे पाकिस्तान सां इलाही मोहबत आहे। ऐं अॼोके ॾींहं ते मां दुआ बि ॾींदुमि ऐं बदुआ बि
1: ॾींदुमि।
0: बदुआ ॾिबी आहे न, हा दुआ असांजी आहे त असांजो हीउ जेको प्यारो वतन आहे उहो हमेशा ता क़यामत दायम ऐं क़ाइम हुजे ऐं दुश्मन खे अलाह सां गारत करे। दुश्मन ॾिसो न, हिकिड़ा त ज़ाहिरी दुश्मन हूंदा आहिनि जेके
1: ख़बर हूंदी
0: आहे दुश्मन आहिनि, आम लाइफ में बि आम ज़िंदगी में बि असां हिन जो मिसाल वठूं तरी कुझु दुश्मन अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके दोस्तनि में लिकल हूंदा
1: आहिनि।
0: हा पाकिस्तान जे लाइ असांजी दुआ आहे त जेके हुन जा ज़ाहिरी दुश्मन आहिनि ऐं जेके हुन जा लिकल दुश्मन आहिनि अलाह साईं सभिनी खे नेस्तो नाबूद करे, हा महफ़ूज़ रखे। सो अॼु ख़ैर सां 14 अगस्त आहे, आज़ादी जो ॾियारो आहे, असां पंहिंजे सामयन खे बि चवंदासीं त हू बि
1: असांखे
0: मुबारक।
1: बिल्कुलु तव्हां छा पियो चयो, प्रोग्राम में कॉल्स बि वठंदासीं, प्रोग्राम में कॉल्स बि
0: वठंदासीं। 0333-212-1322-88 असांजो नंबर आहे, नंबर डायल करे असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था। हीउ नॉन स्टॉप प्रोग्राम आहे, कोई कमर्शियल ब्रेक न हूंदो, नॉन स्टॉप 8 बजे ताईं असां सां गॾु गॾु हूंदासीं। 7:20 त हिते ई थी विया, हुन जे करे हिकिड़ो मिली नगमो ॿुधूं था, मिली नगमे सां पंहिंजे खून खे गरमायूं था, हुन बाद में असां लाइव कॉल जी तरफ़ ऐं सामान जी तरफ़ ईंदासीं।
1: ओके, सो हीउ मिली नगमो आहे जेको असां ॿुधंदासीं, अहिड़ो मिली नगमो आहे जेको बाबा चवंदा न सुतलनि खे बि जगाए छॾींदो। सो अहिड़ो मिली डगमो तव्हांखे ॿुधायां थी, तव्हां सभु इंजॉय कजो।
0: बिल्कुलु
1: सुतो पियो आहे। चलो सभिनी जे लाइ मिली डगमो ई प्रोग्राम आहे जनाब, शाम जो जशन। बिल्कुलु शाम जो जशन आहे, तकरीबन अॼु गर्मी जो ॾियारो हुयो, गर्मी हुई तमामु घणी, त ॿार जेके बि घुमण जो

0: ॾाढो हूंदो जिन माण्हुनि जो उहे यकीन हिनमहिल निकिता हूंदा ॿाहिरि घुमण जे इरादे सां।
1: पहिरियों असांजे ज़माने में हाणे बि उहो ई मज़ा उहे जोश जज़्बा आहिनि, पर अलाए छो पहिरियों तमामु घणो असां एतिरा एक्साइटेड हूंदासीं, या त असां नंढड़ा हूंदासीं तॾहिं एक्साइटेड, हाणे वॾा थी विया आहियूं। सो तव्हांजी छा पोज़ीशन हूंदी?
0: ईअं ई असां बि पहिरियां ख़ुशि हूंदासीं ॾाढो। हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, उन टाइम जॾहिं असां ख़ुशि हूंदासीं, नंढड़ा हूंदासीं ख़ुशि हूंदासीं, उन टाइम जे वॾनि माण्हुनि खां पुछा कजे आ त उहे ख़ुशि हुजा
1: असां सभई ख़ुशि आहियूं अलहमदुल्ला त अॼु आज़ादी जो ॾियारो आहे। ऐं ज़ाहिर आहे ॿार जेके हूंदा आहिनि, ख़ासि जेके इवेंट्स हूंदा आहिनि, आज़ादी जो ॾियारो थियो, ईद जो ॾियारो थियो, ही बि ईद जो ॾियारो आहे। सो ॿार जेके आहिनि उहे ज़ाहिर आहे त एक्साइटेड हूंदा आहिनि। सो अॼु त बसि तूतलनि जी तूं तूं लॻी पई आहे पूरे पाकिस्तान में।
0: चले मिली लॻभॻ इंजॉय करे।

0: अहिड़ी ॻाल्हि न आहे. अच्छा, सो कुझु कॉमेंट्स आहिनि, कॉमेंट्स कढी वठूं था. माण्हू अलाए छा था चवनि था?
1: माण्हू सम्झनि था जेको मां ॻाल्हायां थो.
0: न, माण्हू असां सां गॾु मां अचो अथनि, उहे अलाए छा छा चवनि था. अच्छा, सो हज़ार भाई किथे? उणासी. दानिश खान हमें सुन रहे हैं कराची नाज़िमाबाद से.
1: दानिश खान
0: जी,
1: चलो दानिश खैर लॻो पिया. हा भा,
0: सुञाणे उस्ता छा था?
1: हा बस,
0: अला
1: मुंहिंजे भाणे जो नालो आहे.
0: अच्छा, नाज़िमाबाद में रहंदा आहिनि छा?
1: उहो गुलशन में रहंदा.
0: सही. अच्छा, हाली सुल्तान, तव्हांखे बि आज़ादी मुबारक हुजे. और हुन खां अलावा आज़ादी जे मौके ते दोस्तनि खे सलाम ॾिजनि था. बिल्कुल जी. अब्दुल्ला अली हमारे साथ आख़िरी.
1: आख़िरी चौधगी से अली गुलाब शर.
0: बहुत अच्छा प्रोग्राम है बाजी जी, आपको भी बहुत सारी मुबारकबाद हो जी. थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं. और चाचा कहते हैं चाचा जूड़े जो आए शो में, न चाचा जूड़े जो हलो वयो बाबा. अदर्द दिल कहती है शुक्र है सरिजवान ने मेरी आई डी के नाम पर कुछ नहीं बोला.
1: खुदा अहिड़ी ॻाल्हि आई पर मां बस
0: छॾे ॾिनो.
1: कीअं मेंटेलिटी मुंहिंजी सम्झनि पहिरियों जेॾी महिल तव्हां हिन कमेंट पढ़ियो न दर्द दिल जो, अहिड़ो भोग आयो पर मां छॾे ॾिनोमांसि. मां
0: उहे त कंहिं कॉमेंट मां पढ़ियो नी त चयो त इलाही टाइम खां पोइ त आया त हिन करे भोग आणो प्रोग्राम में. अलाए कंहिंजो कॉमेंट ॾिठो मूं,
1: असां भोगाई आहियूं.
0: कुझु नही बोलते. अरे बाबा ॻाल्हायो ॻाल्हायो.
1: इहो कोन कुझु नही बोलते.
0: दर्द दिल,
1: दर्द दिल, दर्द जिगर. गानो ॿुधो अथव? दर्द दिल, दर्द जिगर, पुराणो गानो आहे मोहम्मद रफ़ी जो.
0: अच्छा, किशोर भाई कहते सर रिज़वान हिकिड़ो सिर्फ़ वीक में हिकिड़ो प्रोग्राम अवां कयो त अवां असांखे ख़ुशी थी.
1: इनशाला इनशाला अलाह कंदो.
0: इहो त बसि तव्हां अचे हिते चई वेंदा आहियो.
1: चलो इहा बि हिननि जी
0: यादि कंदा चवनि था. ॿियो न त पर तव्हां हफ़्ते में सिर्फ़ हिकिड़ो प्रोग्राम कयो.
1: इनशाला इनशाला इनशाला.
0: अच्छा, गोठ पाबू वीरो घर पार कर से दिलीप कुमार मेघवाड़ हमारे साथ हैं. और नवल राय मेघवाड़, दानिश भी हमारे साथ हैं. बहुत शुक्रिया, भाइयों को वेलकम कहा जाता है. और हिकिड़ो लिस्ट में मिली नगमो आयो, सो असां मिली नगमो बि ॿुधंदासीं गॾो गॾु. तव्हां कॉल्स जे चकर में बि आयो.
1: मिली नगमो, चलो मिली नगमो
0: ॿुधी वठूं था.
1: असां वतन जी जेको आहे सो मिली नगमा अॻे जेके पुराणा तव्हां ॿुधा आहिनि, असां त पुराणे ज़माने जा आहियूं, नाइंटीज़ जा. पोइ ॾाढा ज़बरदस्त पीटीवी जा ख़ासि तौर ते जेके मिली नगमा हूंदा आहिनि, जीवे जीवे पाकिस्तान, सो एक परचम के साए तले हम एक हैं, नाहिद अख्तर जान, मैडम नूर जहां जा, मेहदी हसन जा, ये वतन तुम्हारा है, हम है पासवा, तुम हो पासवा. इसके
0: वैसे अगे मिली नगमा इलाही ठहंदा. असा तकरीबन असांजी इते जेका भी आए लिस्ट फोल्डर आए तो उनमें तकरीबन पुराना आए. ठीक है, पर नयो कलेक्शन जो है ना हाँ थोड़ो घट अचे तो सारे लिए बगाए जो बेचारो मिड़ई साल में एक मिली नगमो ठाईंदो आए. बाकी तो असा एतरा हाँ को ज्यादा मिली नगमा नजर भी कोन था अचन तो मानू ठाइन था. पहला बाकी तां वाली गाल इलाही मिली नगमा हूंदा, एतरा पावरफुल हूंदा जो माण्हू ॿुधी मतिलब जोश में अची
1: वेंदो. 1965 जी जंग में तव्हां सॼो हाणे टाइम बि घटि आहे त मैडम नूरजहां जा गायल जेके मिली नगमा हूंदा उहे जवाननि फ़ौजियुनि सॼी क़ौम जा ईअं खून जेको आहे सो गरमाए छॾींदा हुया. सो ऐं वतन खे सजीले जवानो मेरे नगमे तुम्हारे लिए है. सो बहरहाल अलाह कंदो वरी असांजा जेके नौजवान आहिनि उहे इन तरफ़ ध्यानु ॾींदा. साहिर अली बगा खां अलावा बि
0: हिकिड़ो
1: नंढड़ो न आहे मेरे वतन, इहो बि ॾाढो सुठो ज़बरदस्त मिली नगमो आहे.
0: उन त ॿियो त को आयो ई कोन्हे, बसि उहो हिकिड़ो ई वीचारे ॻायो आहे. मिली नगमो ॿुधो
1: मां बसि हिकिड़ो
0: कयूं था. बिल्कुलु
1: डन थी वियो,
0: डन थी वियो.

0: उणिवीह सौ ॿुधो तमामु ॾाढो सुठो हिकिड़ो मिली नगमो हुयो जेको आयत आरिफ जी आवाज़ में हुयो
1: भलो मां इहो बि चवणु चाहियां त तव्हांजो त हाणे त मिली नगमा अचनि ई कोन पिया ऐं हुनजे मथां त अहिड़ो ताज़ो
0: ज़बरदस्त आहे. हिकिड़ी ख़ासि ॻाल्हि आहे त उहो हर हिकिड़ी जेको बि मतिलबु ईंदो आहे न, चाहे ईद हुजे कुझु बि हुजे त उहो हुनजो हिकिड़ो कलाम मिली नगमो या नात
1: अहिड़े क़िस्म जा गाना रिलीज़
0: ज्यादा नथा अचनि जीअं सभु सिंगर आहिनि त सभु सिंगर पंहिंजो हिकु हिकु मिली नगमो कनि ठाहिनि.
1: बसि सही आहे
0: त इहो मतिलबु मुंहिंजे चवण जो मक़सदु इहो हुयो.
1: पंहिंजे शो में भलीकार चऊं था ऐं वक़्तु मां उहो ई अॻ में ॻाल्हि निकिती न त ज़िंदगी गुज़रंदी थी वञे. वक़्तु 7:44 मिंट थी चुका आहिनि ऐं अॼु असां वटि सिर्फ़ हिकु कलाकु बल्कि 45 मिंट सवा ते त असां आनियर थिया आहियूं. सिर्फ़ असां वटि 45 मिंट आहिनि हुया बल्कि हाणे बाक़ी वञी 41 थी वियो बाक़ी 44 थी वियो. सो टाइम इलाही थोरो आहे, हुन जे करे असां जल्दी जल्दी मोकाईंदा
0: आहियूं.
1: मुक़ाबिलो सख़्तु आहे ऐं पंहिंजो वक़्तु घटि आहे.
0: अच्छा अब्दुल्ला अली असांखे ॿुधनि पिया 14 अगस्त जो, तव्हांखे बि खोट सारियूं मुबारकूं हुजनि. और दीदार अली बिरोही भाई में सुन रहे वालेकुम असलाम. निदा आ चुकी की ये शो तो 8 बजे होने वाला था ना, मेरे साथ धोखा हुआ. आपके साथ नहीं भाई, आपको थोड़ी मुझे लग रहा है कि सुनने की थोड़ी कान थोड़े आपके कमजोर हो चुके. मैं कल भी बताकर गई थी कि 7 बजे से लेकर 8 बजे तक शो चलेगा.
1: क्या पता गलती में आपने 8 से
0: नहीं, वो मैंने वजाहत की कि मुझे ऐसा जैसे मैंने पहले बोला कि 6 बजे से लेकर 5 बजे में प्रोग्राम करने वाली हूँ, मैंने उल्टा बोला था. तो वो मैं बोला कि भाई आज मैं उल्टा बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, ये प्रोग्राम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक चलेगा.
1: तो आपने ये बोला होगा ना 8 बजे से 7 बजे तक चलेगा. तो ये कहो ना बाबा, तुम
0: ऐसा नहीं बोला था.
1: तो उसने तो उसका तो कोई कसूर नहीं हुआ ना.
0: दो तीन मरतबा वजाहत की थी. नहीं, निदा अली का.
1: निदा अली का,
0: हाँ, ये निदली का. वैसे दर्द दिल का नाम भी निदा अली है.
1: अच्छा, वो भी निदा है. चले, हम ज्यादा हम अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करते और एक कॉलर की तरफ चलते हैं. उसके बाद जो है फिर कमेंट्स बहुत ज्यादा हैं और पैनल के मैसेजेस भी होंगे. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम
1: सलाम. अलहमदिल्ला केर था ॻाल्हायो? आवाज़ ॿुधल थो लॻे मूंखे.
2: हा सर, बिल्कुलु तव्हांखे आवाज़ ॿुधल ईंदो. सोनाकान मस्तु जेको
1: ॾिठई.
0: हीअ तकरीबन केतिरो पुराणो लिसनर हूंदो?
1: अबा, घणो पुराणो आई?
2: ॿ हज़ार अठारह
1: में
2: असां
1: त 2013 खां हिते हुयासीं. पोइ
0: 18 खां तव्हां प्रोग्राम खां थोरो पासो करे विया.
1: तव्हां 17 खां आयो? 18 खां हुयो.
0: मां 17 में आई
1: हुयमि. 2018 खां आयो तव्हां? 18 या 18? 18 चऊं, 18 चऊं, 18 चऊं. चलो तव्हां 18 चओ, असां 18 चवंदासीं. सही आहे. आवाज़ घटि थी पियो चाचा. 18 वारा आवाज़ कटिजे पियो. अबो अबो थोरो हेॾे अचो न सूर्या. अबो मां पंहिंजी ड्यूटी ॾियां पियो नी. हलो, ॻाल्हाए न अदा. वालेकुम सलाम. भाउ कॉल मिली वई आहे. केरु था ॻाल्हायो? मोहम्मद अयूब जरवार. किथां? मोहम्मद अज़ीज़ जरवार. सही. कहिड़ो हाल आहे जरवार साहब? खेल लॻो पिया? वॾी महिरबानी. तव्हांखे बि आज़ादीअ जूं लख लख मुबारकूं हुजनि. मिली न ॿुधायो, दिलि सां पाकिस्तान ॿुधायो.

0: दिल पाकिस्तान ॿुधाए। ख़ैर मुबारक, मां थोरी देरि जे लाइ सोच में पइजी वियुमि त छाजी मुबारक कुराड़ा थी वियासीं। वाह, जशन आज़ादी मुबारक हुजे। मां थोरी देरि जे लाइ सोचो पई जुम लाइ छाजी मुबारक तोखे। चलो ॿियो ख़ैर लॻो पियो। आज़ादीअ जो ॾींहुं कीअं मल्हायो अॼु? माशा अलाह, स्टेडियम ते विया आहियो छा? प्रोग्राम ते विया आहियो छा कंहिं ते? जी जी, हा, पाकिस्तान नेटवर्क कान। हलो, जी जी, दिल दिल पाकिस्तान ॿुधाए न। ऑलरेडी बंदि हो मोबाइल जा वठ। मतिलब मां ॾिसो न, को सिस्टम को हूंदो आहे, को हुननि जे मथां चेक एंड बैलेंस हूंदो आहे। मां इन करे मथो पिटे पिटे वार ई मुंहिंजा हलिया विया आहिनि। बाबा, सॼो पैकेज था करायूं, ख़ुदा जो कसम, हज़ार हज़ार ॿारहें ॿारहें सै जो, माना 500 MB बि नथा यूज़ थियनि। हले ई कोन थी नेट, वॉइस कॉल जी
1: इहा
0: जेको आहे सो बहसियत क़ौम असां ई आहियूं। सो भाती पाए वतन परस्त ऐं ईमानदार में पंहिंजे प्रोफेशन हर कोई जेकॾहिं सोचे त पोइ जेको आहे न, हिन कर्ज़ छा कर्ज़ ॾियण शुरू कंदो त हिते एतिरियूं आहिनि असांजे मुल्क जा इस्तेमाल कीअं थो साईं वॾे खे। मां त नेटवर्क जा आहे हर महीने
1: पैसा ध्यानु कनि बाबा, छो हले हिन नेट बहितर आहे त माण्हू पैकेज ई न कराए।
0: माण्हू हिननि जो बि एहतिसाब हुजणु घुरिजे, हिननि खां बि सवाल आवाम। हर कार्ड ते माना 20 रुपया टैक्स असां खां। सो
1: अस्सलाम अलैकुम,
0: ॾिसो हाणे हिन जो।
2: वालेकुम सलाम,
0: कहिड़ो हाल आहे? वाह, ख़ैर लॻो पियो आहे। हिन जो नेटवर्क भलो आहे,
2: अलहमदिल्ला।
0: चाचा न चओ न, जंहिं ॻाल्हि खां मूंखे चिड़ वठे उहा तूं ॻाल्हि कर।
1: अच्छा,
0: चओ भाऊ, चओ रिज़वान, चओ।
2: जी जी, अदा रिज़वान। जी जी जी,
0: यार चओ।
2: ऐं सभ खां पहिरियों जेके बि सभु ॿुधंदा, जिते जिते मुंहिंजो आवाज़ वञी रहियो आहे, सभिनी खे जश्न आज़ादी जूं खोड़ सारियूं मुबारक हुजनि, ऐं तमामु हिननि खे बि खोड़ सारियूं।
0: ख़ैर मुबारकूं, ख़ैर मुबारकूं। वाह, दिल दिल पाकिस्तान त ॿुधाए।
2: हा, दिल दिल पाकिस्तान तव्हांखे ॿुधायां थो। हिकिड़ो शेर ॿुधाइणु चाहींदुसि पाकिस्तान।
0: बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह।

0: मुझा मिठड़ा वतन मुझा प्यारा वतन
1: बाबा
0: मुझा मिठड़ा वतन मुझा प्यारा वतन ए जमीन ए वतन सर जमीन ए वतन
1: बाबा
0: तुझा सब मानू सोना सुठा था लगन तुझा सब मानू सोना सुठा था लगन जोर माछी मक्खन का मिठा था लगन
1: वाह वाह
0: जेंजर चेहरो दिसी था सितारा झुकन ए जमीन ए वतन सर जमीन ए वतन मुझा मिठड़ा वतन मुझा प्यारा वतन
1: वाह सही वाह सही वाह मजो अची जबरदस्त माशाल्लाह
0: ही शेर हुआ मुझे दादा सिंह अवामी शायर गुल सिंह गोपाल शाह जो
1: माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त वाह वाह
0: जेके भी सब गुजरिया उन्हें के सुना लाए गोपांग जो खोर सारा सलाम याली मदद था बाय टेक केयर
1: वालेकुम अस्सलाम
2: बाय टेक केयर
1: ठीक है
2: बाय टेक केयर अच्छा एकड़ो मिली ना हले तो इते एकड़ो ताते कमेंट कयो थव ई वारो कमेंट स्पेशली तवां जे
1: बड़ी बुदाए मुझे नजर नथी पई
2: यो चई रिजवान साहब अवां समझो बी शादी जी मुबारक पयो रे कॉलर तां के हां
1: हां
2: अला
1: अला
2: जाई बुदा
1: जाई चो नो कमेंट
2: No caption.
1: No caption. Without caption. खाली पनो खाली तस्वीर ॾिठी अथव खाली कैनवस खाली
2: उहो माना आर्टिस्ट चवंदो आहे हाणे तव्हां माना इमेजिन कयो त हिन में कहिड़ी क़िस्म जी माना
1: तोते वारो लतीफ़ो न आहे सम्झी त वियो
2: शुक्रिया पाकिस्तान हा दर्द दिल थैंक यू तव्हां सां गॾु आयो उन खां अलावा निदड़ी तव्हां बि असां सां गॾु आयो ठीकु आहे जी दीदार अली बिरोई तव्हां शायरी मोकिली आहे ऐं उन खां अलावा हिदायत अल अहमदानी असांजे प्रोग्राम खे ज्वाइन करे चुको आहे हाले सुल्तान खे थी सिदरा सरिज़वान ख़वातीन बोल रहे हम ख़वातीन नहीं है हम गर्ल्स है
1: मूंखे चाचा चओ था पो ख़बर पए चवंदा आहिनि न त हंधु उहो सड़े जाते बाहि लॻे हा
2: बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे अच्छा उन खां अलावा हिदायतुल्ला तव्हांखे मुबारक हुजे बाबा कमेंट्स बाबा जेके पढ़ूं था जेके अचनि था उहे पढ़ूं था मां हाणे सोचां पई त आवाज़ छा में आई इहो हाणे बंदि थियो निदड़ी कहती है इतनी खुशी किस बात की
1: जश्न आजादी
2: अच्छा सिटी दोदापुर से अब्दुल्ला लाहौर हमारे साथी अदा रिजवान भाई अल्लाई टाइम खां पो आया हो आपको वेलकम 14 अगस्त मुबारक हो
1: खैर मुबारक हावा बस मड़े इवेंट ते को ईद ते को शादी बारात ते मड़े अची वेंदा सब मिलंदो आ तईंदा हो ना
2: बिल्कुल
1: अज सब मिलो असा से सब
2: अच्छा ये कहते हैं आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम कैसे हो आपको जश्न आजादी मुबारक हो
1: खैर मुबारक
2: नालो तो था पांचो लिखी हुई कोने को अब्दुल अमर हमारे साथ इतना मोरी से आजादी मुबारक सर रिजवान और बाजी सिदरा मीरपुर खास कब आएंगे
1: केर तुझे अब्दुल्ला अमर भाई इंशाल्लाह जरूर ईंदासीं
2: अंबन जी मौसम हुई त बाजी गुलनाज
1: वाकई में जडे भी गाल बोल थी ॾाढो मोहबत सां असांखे गुलनाज जेको आहे उहो इनवाइट कंदी आहे इनशाला ताला ईंदासीं त ज़रूर तव्हां सां मिलंदासीं भैया इवेंट रखंदासीं हुते
2: न हुनखे इलाही छा चवंदा
1: आहिनि मीटअप रखंदासीं
2: माण्हू जेके जेके यूट्यूबर पंहिंजो मीटअप रखंदा आहिनि उन सां आशर थींदा
1: आहिनि
2: इन करे कैंसिल
1: कयो
2: चलो टाइम जेको आहे सफ़ा जल्दी गुज़रंदो वञे थो

0: ॾियणु चाहींदा, छा चवणु चाहींदा?
1: हिन में बि उहा ई मां पंहिंजी ॻाल्हि मां वरजाईंदुमि त असांजी जेका नई जनरेशन आहे, जेके तव्हां नौजवान आहियो, मां उन्हनि खे हथ बधी गुज़ारिश कंदुमि त तव्हां जो जंहिं बि डिपार्टमेंट सां वाबस्ता आहियो, तव्हां जॉब कयो पिया, तव्हां पढ़ो पिया, तव्हां कमीशन जे फील्ड सां तव्हां आयो, पंहिंजी फील्ड सां पंहिंजी ज़ात सां ज़रूरु सचाई कयो। अलाह साईं इनशाला दुगनी रात चुगर की देगा, कम सां तव्हां सचा थींदव। त माना हूअ अलाह साईं इंसान खे क़ुर शरीफ़ में चए थो त मूं पंहिंजी इबादत जे लाइ पैदा कयो आहे। त जो मतिलबु इहो न आहे त असां चोवीह कलाक सजदे में पिया हुजऊं, नमाज़ुनि में पिया हुजऊं, क़ुर शरीफ़ पढ़ंदा रहूं, पर हलाल रोज़ी कमाइण बि ऐन इबादत आहे। असां जेकॾहिं स्टूडेंट आहियूं, शागिर्द आहियूं, दिलि लॻाए जेकॾहिं असां पढ़ूं था, तॾहिं इहो बि असांजे इबादत में शामिल। इबादत जो मतिलबु अलाह साईं असांखे इन लाइ पैदा न कयो त असां चोवीह कलाक अलाह साईं जी इबादत कंदा रहूं, पर असां जेको बि माश कयूं पिया, कमायूं पिया, जॉब कयूं पिया, पढ़ूं पिया, जेकॾहिं असां ईमानदारी सां हर कम कंदासीं त असांजो उहो जेको कमु आहे उहो इबादत में शामिल थींदो, ऐं असांखे जंहिं मक़सद जे लाइ रब पाक पैदा कयो उहो मक़सदु असांजो पूरो थी वेंदो। मुंहिंजो इहो उहो न विसारियो ऐं उन मक़सद खे वठी करे हलंदो त तव्हां हिन दुनिया में बि कामयाब थींदव ऐं आख़िरत में बि अलाह साईं जे अॻियां तव्हां इनशाला ताला सुरखुरू थींदव। मुंहिंजो इहो नंढड़ो पैगाम पंहिंजे जेंज़ीज़ जे लाइ, नंढड़नि नंढड़नि जेंज़ीज़ जे लाइ।
0: मां बिल्कुल हिन कन में सफ़ाई मतिलबु
1: ख़राब
0: आहे, न मुंहिंजो सही आहे, हेॾा वारो ख़राब इहो ख़राब तव्हांजे हेडफोन्स जी वजह सां थियो आहे। ओके, सो इजाज़त वठूं था तमामु ॿुधंदड़नि सोणनि माण्हुनि खां। वरी इनशाला तव्हां सां मुलाक़ात मुंहिंजी थींदी सुभाणे वारे प्रोग्राम में।
1: लाइक खां टी बजे ताईं उहो कमर्शियल प्रोग्राम न हूंदो, ज़ाहिर आहे रुटीन जो जेको प्रोग्राम पहिरियों हलंदड़ हुयो उहो सुभाणे खां इनशाला ताला स्टार्ट कंदासीं
0: इनशाला।
1: बस पंहिंजे चाचे रिज़वान उल्हक खे दुआ में
0: तव्हां पाण हुननि खे मुश्ताए था वञो, वरी पोइ वरी चवनि था त पोइ वरी
1: चलो सही आहे।
0: ओके, सो अलाह हाफ़िज़।

0: FM Network पर News
1: brought to you by
2: Sona Urea Granular मिट्टी जो मान बधाए
3: रियासतों से जिन्होंने पाकिस्तान के साथ कहा हमने इस वादे को अपने आईन में लिखा नहीं हमेशा निभाते नहीं 2047 तक हमारी नस्ल का काम उस आईनी वादे को हर घर तक पहुंचाना ताकि मेहनत की कमाई से घर चल सके नौजवानों को इस मिले आजादी हर घर तक की मुबारक पाकिस्तान खपे पाकिस्तान
4: पाकिस्तान के आवासी में आप आजादी की सेंचुरी मल्हाईंदी आजादी रुगो सरजमीन हासिल करने नालो न पर पाकिस्तान के मानून से हकन जो वायदो हो उन इलाक रियासत से वायदो हो जिन पाकिस्तान से गडजन जो फैसलो कयो पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो दादा जी जश्न आजादी के मौके से वीडियो पैगाम बिलाल आईन में लिखल वायदा के बार बार वजाइंदा भी आयो पर सदाई निभाईंदा ना जो रोजगार मिले मेहनत की कमाई सा घर हले वोट जो एतराम थे वो चाहन था हर

सिंधी समेत समूरे मुल्क में उड़ासियों जश्न आज़ादी कौमी जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाए पियो वञे। इस्लामाबाद में इकटीह तोहफ़नि ऐं सूबाई राजधानियुनि में एकवीह तोहफ़नि जी सलामी सां ॾींहं जी शुरूआति मुल्की सलामती ऐं ख़ुशहाली लाइ ख़ुसूसी दुआऊं बि घुरियूं।

सरकारी ऐं निजी इमारतनि ते क़ौमी परचम फड़काया विया। सिंध समेत समूरे मुल्क में जश्न जूं तकरीबूं, आज़ादी जी ख़ुशी में केक बि काटिया विया। नौजवाननि, नारियुनि, बुढनि, तोड़ी ॿारनि पारां वतन सां मोहबत जो भरपूर इज़हार।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी 8.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: आए दिन पीर की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिरान नवाज
2: आमिर का सास
1: जीए एफ एम नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद 91.0 जो आवाज, बदलता रहो।

0: मेहमान नवाज धरती
1: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
0: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: अप्रैल से जुम्मे की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए सवाले इश्क, सुनहरी तितलियाँ और अपने फेवरेट टर्किश ड्रामास ड्रामा सेंट्रल के यूट्यूब चैनल पे।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: देखिए ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: फील्ड मार्शल जी कोशिश कैसा रहा हो फौज ए कानून लागू कदड़ इदारन के पेशावर सलाहियत के अखराज तहसीन मुल्क में दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे जो अज़म सदर आसपुरी सरदारी मौजूदा इलाकई सूरत के नजर आड़ो रखे अवाम के रिलीफ दियण की जरूरत से जोर भरीदे आम वाइपे वाली शयन की बिना रंडक के फ्राहमी ए मुनासिब अगर से दस्तियाबी यकीनी बनाई वे यादगार फतह की इफ्तताही तकरीब दौरान अस्करी क्यादत के सदर ए वजीर आजम सा गड शहीद के वारिसन से खसूसी मुलाकात सदर राष्ट्रपति सरदारी वजीर आजम के वासी में फील्ड मार्शल से रास मुनि जो शहीद हैं गाजियन के वारिसन की साबित कदमी कुर्बानी के खराज तहसीन फील्ड मार्शल से रास मुनि शहीद हैं गाजियन के वारिसन के मथे शफकत जो हथ रखते चाहता शहीद असाजे मथे जो ताज है।

जीएफएम नेटवर्क हमेशा कोशिश कई है अड़े किस्म जहाँ जे भी इवेंट थे स्पेशल ट्रांसमिशन होंगी है उन स्पेशल ट्रांसमिशन में असके सुबह का वी बेहतर बेहतर प्रोग्राम ऑनियर थे असि न सिर्फ जीएफएम नेटवर्क पर सिंध के मशहूर आरजेस के आवाज में तमाम बुधाइन यो असो अड़ो तसलसल अज आखिर तई जारी रह तां पांजी राय असांजे हिन प्रोग्राम में ॾेई सघो था बज़रिए एसएमएस एसएमएस करण जो तरीक़ेकार सवलो आहे आसान आहे हमेशह वांगुरु तव्हांखे असां ॿुधाईंदा आहियूं त तव्हां पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो एम आर ओ लिखो स्पेस ॾियो स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां सां 81 ते इहो ज़रूरु हुन में लिखणो आहे त तव्हां जो अॼोको ॾिहाड़ो कहिड़े तरीक़े सां गुज़रियो तव्हां अॼोके ॾिहाड़े ते स्पेशल कहिड़ियूं एक्टिविटीज़ कयूं ऐं इहो बि हुन में ज़रूरु तव्हांखे असांखे ॿुधाइणो आहे त अॼोके ॾिहाड़े ते तव्हां अहद कहिड़ो कयो आहे त असां पंहिंजे हिन क़ौम जे लाइ पंहिंजे हिन वतन जे लाइ छा कंदासीं अलाह ताला असांखे कुदरत जो हसीन रंगन सां सिंगारे छॾियो सरसब्ज़ वण बूटा फसल बाग गुल पाणीअ जूं नदियूं धरतीअ जे हुस्न में इज़ाफ़ो कनि थियूं ऐं साए रंग फितरत ज़िंदगी उमेद अमन ऐं खु़शहालीअ जी अलामत बणजी वियो आहे ऐं तव्हां जॾहिं असां पंहिंजी चौधारी नज़र फेरायूं था न त महसूस थिए थो त साए रंग में हिकु अजीब कशिश ऐं सुकून समायल आहे सावा वण न रुगो माहौल खे ख़ूबसूरत बणाइनि था पर असांखे साफ़ हवा छांव ऐं ज़िंदगी जेको आहे न उहो बि असांखे फराहम कनि था सावा फसल हारी जी महिनत मुल्क जी खुशहाली ऐं मुस्तक़बिल जी उमेद जी निशानी आहिनि उन ई पसे मंज़र में जॾहिं असां पाकिस्तान जे क़ौमी परचम ते नज़र विझूं था न त उन जो साओ रंग असांखे फितरत जे उन ई हसीन तख़लीक़ सां हिकु गहरो तालुक़ महसूस कराए थो क़ौमी परचम जो साओ हिसो मुल्क जे मुस्लमान अक्सरियत जी नुमाइंदगी करे थो ऐं जॾहिं त अक़लियतुनि जी नुमाइंदगी ऐं अमन जो पैगाम ॾिए थो चंड तरक्की ऐं तारो रोशनी ऐं इल्म जी अलामत समझा वञनि था क़ौमी परचम रुगो कपड़े जो हिकु टुकड़ो न अथव मुंहिंजा साईं सुञाणप इतिहाद कुर्बानी ऐं उमेदुनि जी अलामत अथव जॾहिं बि साए रंग ऐं अछे रंग जे परचम खे हवा में लहराईंदे ॾिसो था न त दिल में पंहिंजे वतन जे लाइ मुहबत इज़त ऐं ज़िमेवारी जो अहसास पैदा थियण ज़रूरी आहे असांखे घुर्जे त क़ौमी परचम जी इज़त सां गॾु पंहिंजे धरतीअ जे साए रंग जी बि हिफ़ाज़त करियूं वधि खां वधि वण पोखियूं ॿेलनि खे तबाहीअ खां बचायूं पाणीअ खे ज़ाया थियण खां रोकियूं पंहिंजे माहौल खे साफ़ सुथरो रखूं छो त सरसब्ज़ धरती सिहतमंद खुशहाल ऐं ख़ूबसूरत मुस्तक़बिल मानत हूंदी आहे शायदि उन ई करे जॾहिं असां सोचूं था त अलाह पाक धरतीअ खे साई चादर सां सिंगारियो त असांजे क़ौमी परचम में बि साओ रंग छो आहे त दिल मां हिकु ई जवाब निकिरे थो त साओ रंग ज़िंदगी उमेद अमुन तरक़ी ऐं खु़शहालीअ जो पैगाम आहे।

ए देश मेरा सोना जी हाँ बिल्कुल अल्लाह ताला असांखे तमाम घणो खूबसूरत देश अता फरमायो आहे अल्लाह ताला जा तमाम घणा शुक्रगुजार आहियूं असां अल्लाह ताला असांखे एडी हसीन वादियुनि वारो समुंडनि वारो ऐं सरसब्ज इलाइक़नि वारो मुल्क अता फरमायो आहे त दोस्तनि जा मैसेजिस बि आया आहिनि त हुननि जा मैसेजिस बि पंहिंजे प्रोग्राम में गॾोगॾु शामिल कंदा हलंदासीं ऐं हुननि खे घणो इंतज़ार बिल्कुलु न कराईंदासीं साजिद अली मुंगेरी असां सां गॾु आहे माइक्रो कॉलोनी सखर खां ऐं चवनि था असांजो अॼु को ॾिहाड़ो तमामु बहितरीन गुज़रियो आहे सिंध सलामत सात सलामत जी हाँ बिल्कुल अदा असांजो दुआऊं आहिनि तव्हांजो न सिर्फ़ अॼो को ॾिहाड़ो बल्कि जेके बि तव्हांजे ज़िंदगीअ जा ॾिहाड़ा आहिनि उहे ॾाढा ज़बरदस्त गुज़रनि ऐं असां पंहिंजे सिंध धरतीअ जे लाइ असां पंहिंजे पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान जे लाइ तमामु घणा दुआगू आहियूं त उहे सदा चाम जे ॾींहं ताईं सलामत रहनि वॾी महिरबानी अदा साजिद अली मुंगेरी साहिब तव्हां असांजे शो में शामिल थिया आहियो लख कुर्ब लख अहसान तव्हांजा ॻोठ नबीदाद बंबरो नारो खां इमाम नीनू बंबरो पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे चए थो अदा गुलाब खान ख़ुशि आहियो जी अदा साईं मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां मुंहिंजी दुआऊं आहिनि ऐं मां बि तव्हांजे लाइ दुआ गो आहियां ऐं चवनि था जश्न आज़ादी ॾिहाड़े ते तव्हांखे ऐं तव्हांजी टीम खे मुबारकबाद हुजे जी अदा ख़ैर मुबारक ख़ैर मुबारक वॾी महिरबानी तव्हांजी मुंहिंजा मिठा साईं अलाह ताईं तव्हांखे ख़ुशि ऐं आबाद रखे ऐं असांजे तरफ़ खां बि न सिर्फ़ तव्हांखे तव्हांजी फैमिलीअ खे तव्हांजे ओड़े पाड़े वारनि खे बल्कि पूरे पाकिस्तान जे जेके असांजा लिसनर्स आहिनि ऐं उनखां अलावा जेके असांजा पूरा पाकिस्तानी आहिनि उन्हनि सभिनी खे बि लख लख वाधायूं हुजनि त राबिया सखर खां पंहिंजा लाख लाख अहसान है कि हमें पाकिस्तान जैसा ख़ूबसूरत मुल्क असांखे तमामु घणो हसीन मुल्क अता फरमायो आहे अलाह ताला असांखे समूरियूं उहे नेमतूं अता फरमायूं आहिनि जेके असां जेके उहे मुल्क जनि वटि उहे नेमतूं न आहिनि ऐं उन्हनि जे लाइ ख़्वाब बणियल आहिनि त उहे समूरियूं नेमतूं अल्लाह ताला असांखे अता फरमायूं आहिनि त उन जे लाइ असां तमामु घणा रब करीम जा शुक्रगुज़ार

0: الحمد للہ ऐं शुक्रिया आज़म जी हा न सिर्फ़ क़ाइद आज़म बल्कि असांजा जेके वॾड़ा हुया न जेके जिनखे असां ॾाॾा पड़ॾाॾा तव्हांजा बि हूंदा असांजा बि हूंदा ऐं अगरि तव्हां पाकिस्तान जी हिस्ट्री खोले पढ़ंदा न त उन में तव्हां ॾिसंदा त क़ुर्बानीूं जेके आहिनि उहे के सवनि में न आहिनि के हज़ारनि में न आहिनि लखनि में क़ुर्बानीूं आहिनि उहे नौजवाननि मां उहे वालदेन पंहिंजे नौजवान बचनि जा लाश पंहिंजे हथनि सां खयां हुया ऐं इहे क़ुर्बानीूं के मामूली क़ुर्बानीूं न आहिनि कंहिं घर जी क़ुर्बानी ॾिनी हुई कंहिं दौलत जी क़ुर्बानी ॾिनी हुई कंहिं ज़मीनुनि जी क़ुर्बानी ॾिनी हुई त वरी कंहिं पंहिंजनि जूं क़ुर्बानीूं ॾिनियूं क़ुर्बानीनि जो ई इहो सिलो आहे न जो अॼु अलाह ताला असांखे अहिड़ो ख़ूबसूरत मुल्क था फरमायो आहे ॿुधणु घुर्जे त असां पतोड़ियूं दुनिया तमामु करे रही आहे न त उन तरक़ी याफ़्ता दौरनि में असांखे बि त उन्हनि सां गॾु हलणो आहे न त उन्हनि सां गॾु हलण जे लाइ असांखे छा करणु घुर्बो आहे जी हा बिल्कुलु असांखे तालीम हासिल करणी पवंदी तॾहिं ई असां उन्हनि सां जेको कुल्हो कुल्हे में ॾेई हली सघंदासीं त असां गॾु आहे फुलजी स्टेशन खां फौजी पठाण खान खोसो ऐं चवनि था असलाम वालेकुम त वालेकुम असलाम भाउ मुंहिंजा पठाण खान खोसा अवां असांजा ऐं असांजे प्रोग्रामनि में शामिल बि थींदा आहियो ऐं जश्न आज़ादी मुबारक ॾियो पिया अलाह ते तव्हांखे ख़ुशि रखे मिठा मुंहिंजी तरफ़ खां बि तव्हांखे जश्न आज़ादी जूं लख लख मुबारकूं त नंढे ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे हलूं था ब्रेक जी तरफ़ ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं ऐं वापसि अची करे शामिल कंदासीं तव्हांजा मोकिलियल प्यार भरिया मैसेजेस
1: इट्स 9:30 PM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय सूर्तिका अटी क्रीम ई बीज माइक्रो बीज फॉर्म निखरी और सिर्फ दो दिन में पेट और असली ग्लो असली ग्लो वतन के लिए
2: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के आशार
1: ये अर्ज को हो बयाबान दयारे संगो समर ये अर्ज को हो बयाबान दयारे संगो समर मेरे वजूद का उनवान नहीं तो कुछ भी नहीं जमीन का प्यार नहीं सिर्फ खेल लफ्जों का मैं इसकी खाक पे कुर्बान नहीं तो कुछ भी नहीं
2: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के आशार
1: वतन के लिए

0: वतन के लिए
1: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के आशार।
0: खुदा करे मेरी अर्ज पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशे जवाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल न हो।
1: मिट्टी की मोहब्बत से सरशार हुब्बुल वतनी के आशार।
0: वतन के लिए
2: जी हाँ, तालीम जे मैदान में अगे का अग भरो बेहतरीन काबिले एतमाद तजुर्बेकार आला तालीमी याफ्ता उस्तादन जे निगरानी में हर मजमून जदीद अंदाज में पढ़ायो वने थो। पांजे बारन जे बेहतरीन तालीम जे लाए असान जे स्कूल जरूर विजिट करियो। असा जश्न आजादी के पुरमुसरत मौके ते आईजी सिंध पुलिस मोहतरम जावेद आलम ओडो साहब, डीआईजी शहीद बेनजीर आबाद मोहतरम फैसल बशीर मेमण साहब, एसएसपी नौशर फिरोज मोहतरम मीर रोहल खान खोसो साहब, सिंध पुलिस के जवानन शहीद अहलकारन के खानदानन समूरी

धरतीअ खे वधीक करण जे लाइ वण कुदरती वसीले जो असांजी मतलब रुगो जशन नारा लॻाइणु आहे। तॾहिं मज़बूत ऐं ज़िमेदार रहंदासीं। शागिर्द दिलि लॻाए तालीम हासिल कनि, सलाहियतुनि खे मुल्क जे तरक़ी जे लाइ इस्तेमाल कनि, रोशनी फैलाइनि ऐं हारी महिनत सां बात कनि ऐं हर शहरुनि जी पासदारी पंहिंजे वतन जे मसले, गुरबत, बेरोज़गारी, महांगाई, तालीम जी खोट, सिहत जूं सहूलियतूं ऐं माहौलियाती मसला असां सभिनी जे लाइ वॾो चैलेंज आहिनि। उन सभिनी मसलनि जो हल सिर्फ़ हुकूमत जी ज़िमेवारी नाहे, मुंहिंजा साईं हर शहरी खे पंहिंजो हिसो जो किरदारु अदा करणो पवंदो।

पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हाँ बिल्कुल, असान सभी जी याद हुआ है पाकिस्तान हमेशा शाद व आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। दोस्तों ने कुछ मैसेज आया, उनके भी पांच प्रोग्राम जी सुमा बढ़ाईंदी। असन गडाइन केरा है उमरकोट का असान जो प्यारो भाई अब्दुल जब्बार समी जो असन शो में शामिल है। बड़ी मेहरबानी अदा अब्दुल जब्बार तवां शो में शामिल थे, लख एहसान लख कुर्बत तवां जा। चवन था आई लव यू पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हाँ बिल्कुल अदा, असा सभी की मोहब्बत है पांजे वतन के जवानन सा। असा दुआ गयूं अल्लाह ताला असा जिन वतन के सदाई कायम दायम रखे। तो पुलिस स्टेशन का फौजी पठान खान खोसो चवे थो गुलाब साहब पाकिस्तान जश्न आजादी जो मुबारकूं। अदाजन 65 वारी जेका जंग हुई न उन्हें थे को सॉन्ग आए उन्हें जी फरमाइश कही है। हाजुर अदा बिल्कुल पठान खान तक असा बुधाईदे मेहरबानी तवाजी लख एहसान तव असा प्रोग्राम में शामिल थे। राबिया सखर का चवे थी अला के लाख लाख एहसान है कि हमें पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क तोहफे में दिया, शुक्र अलहमदुल्ला। और शुक्रिया कायदे आजम जैसे कायदे आजम ने और दीगर शहदा ने कुर्बानियां देकर हमारे लिए इतनी प्यारा मुल्क आजाद करवाया। दुआ है कि अल्लाह उनको भी इससे भी प्यारी जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। बिल्कुल राबिया असा दुआ गो है उन्हें लाए जन असाखे खूबसूरत वतन में आजाद हवाओं में साह खण की मौको दिनो। असा उन्हें दुआ गो हूं तो अल्लाह तला उन्हें जन्नत अल फिरदोस में जगह अता फरमाए। मेहरबानी तवाजी तवे प्रोग्राम में शामिल थे। तुम टो मैसेज भी मुझे प्रोग्राम में आए उन्हें तवाजो चवण है त अल्लाह तला जो लख लख एहसान पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क तोहफे में दिया है। मेहरबानी राबिया तवाजी तवे शो में शामिल थे।

मेरा बात बिल्कुल असां जो मुल्क पाकिस्तान भी शामिल कंदा हलूं साई मुगेरी माइक्रो कॉलोनी सखर खां चवे थो अॼु पंहिंजी संगत जे सखर ऐं पूरे पाकिस्तान जी आज़ादी जूं मुबारकूं ऐं दुआ आहे त असांजे इस्लामी इहाद रखे पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जेको लिखे थो मैसेज उहो मुगेरी इरशाद अली मुगेरी अली मुगेरी अब्दुल जबार मुगेरी अब्दुल खालिक मुगेरी ऐं अहमद रज़ा मुगेरी ऐं हुनजी फैमिली वॾी महिरबानी अदा तव्हांजी तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया। फुल मोरी खान डाकोसो पंहिंजे प्रोग्राम ॿुधे गुलाब खान वालेकुम असलाम ऐं चवे थो आज़ादी पाक फ़ौज खे असांजो सलाम आहे।

आज़ादी जी महफ़िल जो वक़्तु पहुचण वारो आहे पंहिंजी पुॼाणीअ ते ऐं वञण खां पहिरियां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त आज़ादी हिकु वॾी नेमत अथव जंहिंजी क़दुरु ऐं हिफ़ाज़त असां सभिनि जी ज़िमेवारी आहे। अचो त हिन आज़ादी जे ॾिहाड़े ते हिकड़ो अज़म करियूं। कहिड़ो अज़म कंदासीं? त तरक़ी, ख़ुशहाली, सलामत, ईमानदारीअ सां मार अदा कंदासीं। कुर्बानियूं पूरनि बुज़ुर्गनि ऐं सलाम पेश करियूं था। सिंध सलामत, पाक सलाम। हयाती रही त वरी तव्हां में गॾंदासीं। पंहिंजे मेज़बान भेण खे इजाज़त, वीदे वीदे तव्हांखे ॿुधाईंदो थो वञा। इंजॉय ज़रूर कजो।